मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि तदनुसार 20 जून सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: चार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत

0: रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज का विचार में आइए सुनते हैं कर्तव्य विषय पर विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: कर्तव्य, कर्म ही कर्तव्य है। जब ये पंक्तियां लिख रहा हूं उस समय मुझे एक समाचार पत्र विक्रेता का चेहरा दिखाई देता है जो कि दिव्यांग है लेकिन अपनी ट्राइसिकल पर अखबार बेचता है। उसने अखबार बेचना कर्म बना दिया और उसमें तन्मय हो गया। अब ये कर्तव्य बन गया। तो ऐसे ही क्षण प्रतिक्षण यह प्रकृति हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित करती रहती है। एक किसान के लिए खेती कर्तव्य है, बड़े के लिए व्यापार करना, लेखक के लिए लिखना। यदि यह कर्तव्य बोध जागृत हो जाए तो मनुष्य का जीवन सार्थक होकर किसी लक्ष्य तक पहुंच सकता है और यदि यह कर्तव्य बोध सो जाए तो मनुष्य की गिनती पशुओं में होने लगेगी। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि गीता के अध्याय 2:47 में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु रभूरभु मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये कहते हुए

कृष्ण अनावश्यक को छोड़कर आवश्यक पर जोर देते हैं, वहीं वे ये भी कहते हैं न ही कश्चित क्षण अमपि जात उत्तिष्ठत कर्म कृता। कोई भी व्यक्ति क्षण भर में बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। अब ये निरंतर कर्म अगर कुशलता से किया जाए तो यह योग बन जाता है। योगा

0: जिन पर लिखा होता है कर्म ही पूजा है। अब ये बड़ी बात है, पूजा को हम विशिष्ट मानते हैं, लेकिन उसका कर्म की कुशलता से जोड़ दें तो वो खूबसूरत बन जाती है, पूजा बन जाती है। पूजा से तात्पर्य क्या है? पवित्रता, शुचिता, शुद्धि, आत्मीय, वरेण्य, देवीय जैसे विशेषण जिसके साथ आसानी से जुड़े वो पूजा। यहाँ यह भी देखने योग्य बात है कि कर्तव्य का मार्ग कठिन भले ही हो, होता कल्याणकारी है। यहाँ एक बात और देखने वाली है, जो व्यक्ति कर्म से भागता है वो जीवन से भागता है, वो जीवन से हारता है, क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य बनाया था वहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पाया, बीच में ही उसने अपने घुटने डाल दिए, बैठ गया, हार तो स्वतः निश्चित हो ही जाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरे से हारता है, स्वयं से भी हार जाता है, और ये हार उसे धूल डालती है, उसके जीवन पथ को गलत रास्ते पर ले जाती है, जहाँ अंधेरा है, सीलन है, तंगी है, जहाँ जिंदगी गायब है। इसीलिए गीता के तमाम टीकाकार कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि फल की इच्छा हमारे पुरुषार्थ को कमज़ोर करती है, और जब पुरुषार्थ कमज़ोर हो जाता है तो कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो व्यक्ति पिछड़ता ही चला जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बौरी करेगो कब।
1: कर्तव्य विषय पर था आज का विचार, वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 172 से दोहा संख्या 174 की अंतिम चौपाई तक।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। 7 बजे सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

8:30 पर आप सुनेंगे विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। आज इस कार्यक्रम का 21वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा देश की शिक्षा प्रणाली में विज्ञान की भूमिका। इस विषय पर जानकारी के साथ आप सुनेंगे वार्ता, औद्योगिक रसायनों का पर्यावरण पर प्रभाव। वार्ताकार होंगी प्रतिभा। प्रेरणादायक वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस पर जानकारी, रोचक वैज्ञानिक तथ्य। आलेख और प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। कार्यक्रम का संयोजन श्री अमित सिंह का। सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार बुद्धादित्य मुखर्जी, आप सुनेंगे इनका सितार वादन राग तोड़ी। सवेरे 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का 19वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। दिन में 11 बजे श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर होगा। कार्यक्रम के सूत्रधार होंगी श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। दिन में 1:05 पर महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा के विषय रहेंगे सरकार के 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए योग से स्वास्थ्य लाभ, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समिति, विश्व शरणार्थी दिवस। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता महिलाओं में योग के लाभ और महत्व। वार्ताकार होंगे श्रीमती कल्पना शर्मा। साथ ही रसोई की बातें और ब्यूटी टिप्स। दिन में 3:55 पर आप सुनेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने का सीधा प्रसारण। संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय योग, इसकी तकनीकें, आसन और लाभ। लघु जानकारी विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता व्यस्त जीवन शैली और योग विषय पर। जानकारी देंगे श्री मुदित कोठारी, इनसे बातचीत करेंगी सुश्री सुखमणि कौर। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए गूंजे गांव का वार्ड कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:00 आप सुनेंगे बीकानेर दर्पण कार्यक्रम। बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम होता है ये। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय का। आज इस कार्यक्रम का 149वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रस्तुति रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: किसान भैया राम राम। गर्मी रे समय में जायद में बोवन नाली मूंगरी बुआई आपा कर सका। हाँ, मूंग जिसी दलहनी फसलां जी की है वे आपा ने चोखो फायदो भी देवे और सागे सागे खेत में नाइट्रोजन री मात्रा ने भी बढ़ावे और दूसरी फसलां ने बढ़ने में भी आ बहुत सहायता करे। मूंगरी फसल में अगर ज़्यादा बरसात हो जावे तो भी सो आपाने वास्ते नुकसान हो सके। 60-70 प्रति मीटर वार्षिक बरसात री जरूरत होवे मूंग ने। मूंगरी खेती बटे उपयुक्त तो रहे जठे बरसात इतनी ही होवे। मूंगरी फसल ने गर्म जलवायु की जरूरत पड़े है तो खेत री पहली जुताई हैरो या मिट्टी पलटन वाला रिजर हलसू करनी चाहिए। इरे बाद रे मायने 2-3 जुताई कल्टीवेटर सो कर और खेत ने अच्छी तरह अपने भुरभुरो कर लेनो है। आखिरी जुताई में लेवलर लगानो ज़्यादा जरूरी है जिके सो खेत में नमी लंबे समय तक संरक्षित रह सके। दीमक सु ग्रसित जमीन में फसल री सुरक्षा रे वास्तर क्यूना लफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति एकड़ रे हिसाब से अंतिम जुताई सु पहला खेत में बिखेर देनी है जिकेरे बाद मिट्टी में जुताई करनी है। मूंगरी कई किस्मा है जिया पूसा वैसाखी। आज की फसल है इरी अवधि 60-70 दिन है। पौधे में अर्ध फैलाव है, फलियां लंबी, उपज 8-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मोहिनी फसल री अवधि है 70-75 दिन, उपज है 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पीला मोजेक वायरस और सर्कोस्पोरा लीफ सपोर्ट रोग रे प्रति ओ सहनशील है। इरे बाद है पंथ मूंग 1

0: फसल की अवधि है 75 दिन खरीफ तथा 65 दिन जायद। उपज क्षमता है 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ML1 फसल की अवधि है 90 दिन, बीज छोटा और हरे रंग रहा है। उपज क्षमता है 812 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। वर्षा आ एक अगेती किस्म है, इसकी उपज क्षमता है 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सुनैना फसल की अवधि जिकी है बस 60 दिन है, उपज क्षमता है 1215 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ग्रीष्म मौसम रेवास्तरा बहुत उपयुक्त है। जवाहर 45 आ किस्म जिकी है हाइब्रिड 45 भी कही जावे है। आ फसल 7585 दिन अवधि की उपज क्षमता 1013 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। खरीफ रे मौसम रे वास्तर उपयुक्त है। कृष्णा 11 अगेती किस्म की फसल है, अवधि है 65-70 दिन, उपज क्षमता 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पंथ मूंग 3 फसल की अवधि है 60-70 दिन, ग्रीष्म ऋतु में खेती रे वास्तर उपयुक्त। पीला मोजेक वायरस तथा प्योरीड्यूल रोधक भी है। अमृत फसल इरी अवधि है 30 दिन, खरीब मौसम रे वास्तर उपयुक्त है। पीला मोजेक वायरस रोग रे प्रति आ बहुत ज़्यादा सहनशील है। और इरी उपज क्षमता की बात करा तो 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बीज री मात्रा और बीजोपचार, खरीब मौसम में मूंग रा बीज जी का है वे 1215 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही लागे है। जायद में बीज री मात्रा 20-25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी चाहिए। 3 ग्राम थायरम फफूंद नाशक दवा रे वास्तर प्रति किलो बीज रे हिसाब से उपचारित करनो है और बीज भूमिजन्य बीमारियां से फसल ने सुरक्षित राखसी। 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर ने 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ रे सागे गर्म कर और ठंडो होने पर बीज रो उपचार कर छाया में सुखा लेनो है और बुवाई कर देनी है। इया करने से नत्रजन स्थिरीकरण अच्छो होवे। बुआई खरीफ और जायद दोनों फसलों में अलग अलग समय पर करनी है। खरीफ में जून रे अंतिम सप्ताह में और जुलाई रे अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सका हाँ। जायद में मार्च रे प्रथम सप्ताह से अप्रैल रे द्वितीय सप्ताह तक बुआई कर सका हाँ। कतार सु कतार रे बीच री दूरी जी की है बापा ने 45 सेंटीमीटर और पौधा सु पौधे रे बीच री दूरी आपा ने 10 सेंटीमीटर रखनी है। आ दूरी सबसे ज़्यादा उचित है। खाद और उर्वरक की अगर आप बात करा तो खाद और उर्वरक रे प्रयोग रे सु पहला मिट्टी री आपा ने जांच करा लेनी है। फिर कम से कम 5-10 टन गोबर री खाद या कंपोस्ट आपा ने देनी है। मूंग रे वास्तर 2 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश, 25 किलोग्राम गंधक और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर री जरूरत होवे है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारा चैनल है। आइए सुनते हैं लोक भजन।

प्रशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भाव

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कविता वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। योग कर्मेषु कौशलम, जी हाँ, योग जीवन को कुशलता और संतुलन से जीने की कला सिखाता है। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा, तनाव या फिर अनिद्रा हो, ऐसी बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही है। आधुनिक चिकित्सा हालांकि इनका उपचार तो करती है, लेकिन इनके मूल कारणों को दूर करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, यही कार्य योग सहजता से कर सकता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं श्रोताओं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। नियमित योगाभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और अनेक रोगों के प्रबंधन में सहायता मिलती है। श्रोताओं, हम कहें कि योग के माध्यम से बीमारियों का प्रबंधन संभव है। योग हमारे जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। जब जीवन यही है श्रोताओं, तो उसे स्वस्थ, सुखी और संतुलन करना या उसे बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और योग इस दिशा में हमारा सच्चा साथी साबित हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है हम अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ रहने की सदा कोशिश करें।

श्रोताओं, सभी को अपना घर बहुत प्यारा लगता है। न कोई अपना घर छोड़ना चाहता है, न अपनी मिट्टी से दूर जाना चाहता है। लेकिन युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं और असुरक्षा की परिस्थितियां लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। श्रोताओं, ऐसी ही विस्थापित लोगों की पीड़ा, संघर्ष और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष आज ही के दिन 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। श्रोताओं, ये दिवस हमें मानवता, सहानुभूति और सहयोग का संदेश देता है। हम उन लोगों के साहस को सलाम करें जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। श्रोताओं, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती और न ही करुणा की कोई भाषा होती है। मानवता की ये भावना शरणार्थियों को नया जीवन, नई आशा और आगे बढ़ने का साहस देती है। हम सभी मिलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण करने का संकल्प लें जहां हर व्यक्ति सुरक्षित हो, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन जी सके।

श्रुतम साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। समाज में घटित होने वाली हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर उम्मीद को साहित्य अपने शब्दों में संजोता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि, अपना घर और अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए विवश होता है, तो उसका दर्द केवल एक व्यक्ति का दर्द नहीं रह जाता, बल्कि मानवता की सामूहिक संवेदना बन जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हमें उन लाखों लोगों की याद दिलाता है जो परिस्थितियों के कारण अपने घरों से दूर जीवन बिताने को मजबूर है। श्रुतम साहित्य ने सदैव ऐसे लोगों के दुख, संघर्ष, साहस और उम्मीद को स्वर दिया है। चाहे कविता हो, कहानी हो या फिर उपन्यास हो, मानवता और करुणा का संदेश साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति रहा है। कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती है श्रोताओं, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। श्रोताओं, पीड़ा को समझना, उसके समाधान की आगे बढ़ना एक संवेदनशील समाज की पहचान है। श्रोताओं, अगर साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक है, जहां साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है, वहीं ये मानवीय मूल्यों का निर्माण और समाज के उत्थान की नींव भी रखता है। हमारी सोच को विस्तृत करता है, संस्कृति का संरक्षण करता है और जनमानस को सही दिशा देने का प्रयास भी करता है। साहित्य हमें विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराता है, जिससे समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ती है। ऐतिहासिक और प्रेरणादायक साहित्य लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सिखाते हैं और सही और गलत का भेदभाव भी सिखाते हैं।

श्रोताओं, भेदभाव से ऊपर है प्रेम, स्नेह और अपनापन। इंसान की असली पहचान उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र नहीं, बल्कि उसके भीतर बसने वाली मानवता है। जब हम एक दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हैं, तभी एक संवेदनशील और समरस समाज का निर्माण होता है। श्रोताओं, प्रेम वो शक्ति है जो दूरियों को मिटाती है, स्नेह वो भाषा है जिसे हर हृदय समझता है, और अपनापन वे भावना है जो अनजान लोगों को भी अपना बना देती है।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, गीत फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के हैं।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने मनमौजी फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का है, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जीने की राह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर मोहम्मद रफी का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी के गाए चरस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। फिल्म संगीत आप हमारी इसी सभा में सवेरे 10:35 पर सुनेंगे। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। एफएम पर आप सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की

0: शुरुआत करेंगे संदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर नाहर आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत

0: वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। आज आप इसका 21वां एपिसोड सुनेंगे। प्रमुख चर्चा का विषय देश की रक्षा प्रणाली में विज्ञान की भूमिका, साथ ही वार्ता औद्योगिक रसायनों का पर्यावरण पर प्रभाव, वार्ताकार प्रतिभा, प्रेरणादायक वैज्ञानिक डॉ. सत्येंद्र नाथ बोस, रोचक वैज्ञानिक तत्व, आलेख प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया।

0: विज्ञान के नए आयामों से रूबरू करवाता हमारा विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विज्ञान की दुनिया की आठवीं कड़ी में। मैं हूं बरखा थानवी व्यास और आज हम विज्ञान के एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां विज्ञान और देशभक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस समय देशभक्ति की भावना चारों ओर बिखरी हुई है, झंडे लहरा रहे हैं, दिलों में उमंग है और मन में एक ही संकल्प है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जब बात आती है राष्ट्र के विकास की तो विज्ञान उसका मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने सीमाओं की रक्षा से लेकर खेती की हरियाली तक और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन तक हर कदम पर भारत को आगे बढ़ाया है। तो आज की इस विशेष कड़ी में जानते हैं किस तरह विज्ञान ने देशभक्ति को एक नया आयाम दिया है और कैसे हम सभी इस ज्ञान के यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत देश की रक्षा प्रणाली में विज्ञान की भूमिका पर और ये समझेंगे कि कैसे ये उपलब्धियां देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी हैं। साथ ही हम जानेंगे अप्रैल माह की वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में। विज्ञान की बात में हम जानेंगे रसायन शास्त्र की व्याख्याता प्रतिभा से औद्योगिक रसायनों के पर्यावरण पर प्रभाव के विषय में जानकारी और साथ ही हम जानेंगे प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस की प्रेरणादायी जीवनी के बारे में और उसके बाद होगा आपका पसंदीदा सेगमेंट क्या आप जानते हैं। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे आज के विशेष विषय के साथ, एक ऐसा विषय जो न केवल हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि हमारे वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और तकनीकी प्रगति का भी प्रमाण है। विषय है देश की रक्षा प्रणाली में विज्ञान की भूमिका। ये एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और राष्ट्र रक्षा के संगम पर आधारित है। आधुनिक युग में जब युद्ध की परिभाषा बदल रही है, सीमाएं डिजिटल हो रही हैं और खतरे केवल शारीरिक नहीं बल्कि तकनीकी भी हैं, ऐसे में विज्ञान और तकनीक रक्षा प्रणाली की रीढ़ बन चुके हैं। प्राचीन काल में तो युद्ध तलवारों और हाथियों पर लड़े जाते थे, परंतु आज के समय में युद्ध विमान, मिसाइल, सैटेलाइट और साइबर सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक साधनों से लड़े जाते हैं। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है, इसके पीछे दशकों का वैज्ञानिक अनुसंधान, परीक्षण और परिश्रम है। आज भारत की रक्षा प्रणाली विज्ञान पर निर्भर है, चाहे वह थल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना, सभी को विज्ञान और तकनीक से शक्ति

मिल रही है। भारत में रक्षा विज्ञान की बात हो और डीआरडीओ का उल्लेख ना हो, ये संभव ही नहीं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की यह वह प्रमुख संस्था है जो देश के लिए स्वदेशी रक्षा तकनीकें विकसित करती हैं। डीआरडीओ ने कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह मिसाइल सिस्टम हो जिसमें कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें शामिल हैं, साथ ही रशिया के सहयोग से स्वनिर्मित ब्रह्मोस मिसाइल भी एक बेहद शानदार उदाहरण है। हमारी रडार और निगरानी प्रणाली और फाइटर जेट्स जैसे तेजस, या फिर हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, आधुनिक हथियार या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण, ये सभी हमारे रक्षा अनुसंधान में वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की देन है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान भी रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट अब केवल मौसम पूर्वानुमान तक सीमित नहीं है, वे सीमाओं की निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, संचार प्रणाली को मजबूत करने और नेविगेशन में सहायक हो रहे हैं। कार्टोसैट, रीसैट, जीसैट जैसी सैटेलाइटें सेना के लिए आंख और कान बन चुकी हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम द्वारा भारत ने ये साबित कर दिया है कि अब वह अंतरिक्ष में भी अपनी रक्षा कर सकता है। आज की लड़ाई साइबर युद्ध, डेटा हैकिंग, सर्वर अटैक और डिजिटल जासूसी जैसे नए खतरों का सामना भी कर रही है। ऐसे में विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता ही हमारी रक्षा की पहली पंक्ति बनती है। भारत ने अपनी साइबर सेना को मजबूत किया है। सेना, नौसेना और वायुसेना के पास अपने अलग अलग साइबर यूनिट्स हैं। सरकार ने CERTN यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसी एजेंसियों का गठन किया है जो डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करती है। विज्ञान अब केवल हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी क्रांति ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग अब युद्ध की रणनीतियों, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी हो रहा है। भविष्य में AI की मदद से दुश्मन की गतिविधियों की पहचान, ड्रोन नियंत्रण और ऑटोमेटिक सर्विलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलने वाले रोबोटिक सोल्जर और आभासी प्रशिक्षण सिम्युलेटर यानी कि वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग भी इस क्षेत्र में देखे जा सकेंगे। ये सब कुछ विज्ञान आधारित बदलाव है जो रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। एक समय था जब भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था, पर आज विज्ञान और नवाचार के बल पर भारत स्वदेशी तकनीकें बना रहा है। इसका उदाहरण है स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, हल्के युद्ध हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH, हमारी खुद की मिसाइल रक्षा प्रणाली पिनाका यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, और हमारा अपना INS विक्रांत जो कि भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब देश रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का ही प्रमाण है। रक्षा प्रणाली केवल हथियारों तक सीमित नहीं होती, सैनिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मनोबल को बनाए रखने में भी विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और माइंस में सुरक्षा उपकरण हो, या उच्च हिमालय क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए विशेष पोशाक और भोजन, जीवन रक्षक दवाइयां हो या फिर जैव तकनीक आधारित ट्रीटमेंट, संचार प्रणाली, रेडियो और GPS आधारित उपकरण, इन सब की नींव वैज्ञानिक शोध और तकनीकी नवाचार पर है। देश की रक्षा सीमा पर खड़े सैनिकों से तो होती ही है, साथ ही वैज्ञानिक भी साइलेंट वॉरियर होते हैं। ये युवाओं के लिए एक सुनहरा क्षेत्र है। वे DRDO, इसरो, HAL, BEL जैसी संस्थाओं से जुड़कर देश की रक्षा में योगदान कर सकते हैं। आज भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो विज्ञान और देशभक्ति दोनों को साथ लेकर चलें। विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाकर भी हम राष्ट्र रक्षा में भागीदार बन सकते हैं। रक्षा और विज्ञान का रिश्ता रणनीति, तकनीक, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, हमारी रक्षा प्रणाली और सुदृढ़ होती जाएगी। हमारा भविष्य बुद्धिमता, तकनीक और नवाचार पर निर्भर है, और इसमें विज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तो श्रोताओं, आपने जाना कि देश की रक्षा सैनिकों की बहादुरी के साथ विज्ञान की प्रगति पर भी निर्भर करती है। आज भारत एक शक्तिशाली विज्ञान आधारित रक्षा तंत्र विकसित कर रहा है, और इसमें हर नागरिक की भूमिका है। शोधकर्ता से लेकर इंजीनियर तक, शिक्षक से लेकर

0: छात्र तक। तो आइए हम सब मिलकर विज्ञान को राष्ट्र रक्षा का माध्यम बनाएं। देश की सीमाएं तभी सुरक्षित रहेंगी जब हमारी प्रयोगशालाएं सशक्त होंगी और विज्ञान का हर आविष्कार देश की सुरक्षा का एक नया कवच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट विज्ञान की बात की ओर। इस सेगमेंट में आज हम जानेंगे रसायन शास्त्र की व्याख्याता प्रतिभा से औद्योगिक रसायनों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी। तो सुनते हैं इसी विषय को विस्तार से।
1: पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का अर्थ है चारों तरफ का आवरण। हमारे चारों ओर उपस्थित जल, वायु, रोशनी, विकिरण, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले हिंसक पशु पक्षी भी पर्यावरण में सम्मिलित हैं। वह पदार्थ जो पर्यावरण में आवश्यक मात्रा से अधिक होता है वह प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय त्रुटियों के कारण होता है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय त्रुटि के कारण हुई है। वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडल की निचली परत जिसे ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल समुद्र से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। इसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल होता है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। शोभ मंडलीय प्रदूषण, ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, गैसियस वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फैलता है। आधुनिकता का पर्याय बनी फैक्ट्रियों से उत्पन्न हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि इसी श्रेणी के प्रदूषक हैं। कणकीय यानी पार्टिकुलेट प्रदूषक, इसमें धुआं, धूल, कोहरा, फुहारा आदि आते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का आधिक्य भी प्रदूषण में सम्मिलित है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह गैस कार्बन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। श्वास के साथ ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ O2 की अपेक्षा प्रबलता से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल की अपेक्षा 300 गुना अधिक स्थायी होती है। यदि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में 34% तक हो जाती है तो दम घुटने लगता है और इसके बाद मौत हो जाती है। फैशन की इस अंधी दौड़ में बीड़ी या सिगरेट की जगह अब ई सिगरेट भी आ गई है, जो निकोटीन और अन्य रसायनों को वाष्प रूप में फेफड़ों तक पहुंचाती है। सिगरेट से टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वायु में CO2 का प्रतिशत 0.03% से अधिक होने पर यह प्रदूषक का कार्य करती है। वाहनों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में CO2 की मात्रा तथा विकासशील देशों में चूना पत्थर के विघटन से, कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से CaO और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यद्यपि CO2 हमें हमारे पादपों और पेड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाती है, जिससे पेड़ पौधों द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, परंतु पेड़ पौधों की लगातार कटाई जीवाश्म ईंधन की अधिक दहन से CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के तापमान में हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है। विज्ञान के निरंतर विकास ने कहीं न कहीं पर्यावरण को अनदेखा कर दिया है। अभी हाल ही की घटना है, हैदराबाद के तेलंगाना के कांचा गोचिली बोवली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। सरकार ने इस जमीन पर IT और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल के लिए उपयोग में लानी चाहिए, जिससे यहाँ के सारे पेड़ों को नष्ट किया जाना था, पर कुछ छात्रों व पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका भरपूर विरोध

किया। आज का आधुनिक इंसान यह नहीं समझ पा रहा है कि पेड़ों के बिना जीवनदायिनी ऑक्सीजन मात्र एक सपना बनकर रह गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकल्प हो सकता है, परंतु जीवनदायिनी ऑक्सीजन का कोई भी विकल्प नहीं है। तभी विश्नोई संप्रदाय के जाम्बू जी ने कहा है, सिर साटे रुक राखे तो भी सस्ता जान। कहने का अभिप्राय यह है कि पेड़ बचाना सिर बचाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कुछ कंपाउंड देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन विशेषकर सल्फर युक्त कोयले के दहन से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड धीमी गति से ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से अस्थमा, श्वसन रोग और आंखों में जलन की शिकायत होती है। महानगरों में दिन रात गुजरते वाहनों से SO2 व SO3 का उत्सर्जन भारी मात्रा में होता है। ये न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि इसके दुष्प्रभाव पौधों पर भी देखे गए हैं। यह फूलों की कलियों के कड़ापन उत्पन्न कर देती है, जिससे वह शीघ्र ही गिर जाते हैं। पत्तियों का रंग भी फीका पड़ जाता है। सल्फर डाई व ट्राइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, जो अम्लीय वर्षा के रूप में पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। रसायन विज्ञान में सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। यह अम्ल सख्त से सख्त चीज को जला सकता है, उसका रासायनिक स्वरूप बदल सकता है। ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर का रंग पीला पड़ने का कारण यही अम्लीय वर्षा है। एसिड रेन शब्द अम्लीय वर्षा शब्द को सर्वप्रथम 1852 में स्कॉटिश रसायनज्ञ रॉबर्ट एंगल स्मिथ ने दिया था। अम्लीय वर्षा फसलों, पौधों, जानवरों के लिए बेहद हानिकारक है। अम्लीय वर्षा मिट्टी की बनावट को बदल देती है। अम्लीय वर्षा से नदियों, तालाबों, जलीय पारिस्थितिक पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है। पानी के पाइप में जंग लग जाती है, जिसके कारण पानी प्रदूषित होता है तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, तांबा आदि पानी में रिसकर आ जाते हैं, जिससे वे पानी का प्रदूषण फैलाते हैं। कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में प्रदूषक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाहनों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित होती हैं। सुपरसोनिक विमानों से भी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से पौधों के पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस घटने के कारण पत्तियां गिर जाती है। मानव में NO2 से फेफड़ों में सूजन आ जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से रबड़ में दरारें पड़ जाती है। NO2 जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, और यह नाइट्रिक अम्ल अम्लीय वर्षा करता है। हाइड्रोकार्बन मीथेन गैस एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन व कार्बन से अभिक्रिया कर बने हुए सभी रसायन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीथेन एक प्रमुख हरित गृह गैस भी है। ग्रीन हाउस, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के निरंतर बढ़ते तापमान का कारण जानते हैं, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे मुझे सातवीं कक्षा की वह कविता की पंक्तियां याद आती है, जिसमें लिखा है, वाटर एंड वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग। चारों तरफ पानी होगा लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 गुना अधिक ऊष्मा का अवशोषण मीथेन द्वारा किया जाता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिससे वाहनों

0: में प्रयोग की लाया जाता है। मीथेन सीएनजी का प्रमुख घटक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका उपयोग मुख्यतः प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेटर्स में या कोल्ड स्टोरेज आदि में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न हैं, जैसे फ्रियॉन्स, CF2, Cl2, ये रंगहीन व गंधहीन होते हैं। ये सभी ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत वह है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में छिद्र हो गया है। यह छिद्र मुख्यतः अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया है। गर्मी के मौसम में NO2 व CLO मुक्त मूलक बनाते हैं जो ओजोन से अभिक्रिया कर ओजोन में छिद्र का कारण बनते हैं। जिससे ओजोन में छिद्र बढ़ता जा रहा है, उससे आने वाली पराबैंगनी किरणें त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। यदि समय रहते इन रसायनों का कोई प्राकृतिक विकल्प न सोचा गया तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकेगा, जिसके लिए उत्तरदायी मानव और वैज्ञानिक युग होगा।
1: आज के हमारे विज्ञान प्रेरणा खंड में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिनकी खोजों ने आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा प्रदान करी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस की। वे क्वांटम भौतिकी के जनक माने जाते हैं और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के सह निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। वे प्रारंभ से ही गणित और विज्ञान में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित में स्नातक तथा परा स्नातक की पढ़ाई की और हर बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके वैज्ञानिक योगदान के बारे में अगर हम बात करें तो 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी के एक ऐसे नियम का प्रतिपादन किया जो फोटोन जैसे कणों की सांख्यिकीय व्याख्या करता है। उनका यह शोध पत्र उन्होंने स्वयं अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा। आइंस्टाइन उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बोस के नाम पर इन कणों को बोसोन नाम दे दिया। अब बोसोन क्या है? बोसोन ऐसे मूलभूत कण होते हैं जो बल के वाहक होते हैं, जैसे कि प्रकाश का फोटोन या हाल ही में खोजा गया हिग्स बोसोन। इन कणों का व्यवहार बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के अनुसार होता है। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस को कई विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर ही हिग्स बोसोन जैसे कण का नामकरण किया, जिसे लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। डॉक्टर बोस की प्रसिद्धि इतनी थी कि आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने उनके साथ काम करने को सम्मान की बात माना। डॉक्टर बोस न केवल एक महान शोधकर्ता थे बल्कि एक प्रेरणादायक शिक्षक भी रहे। उन्होंने भारतीय विज्ञान को नई पीढ़ी देने में अहम भूमिका निभाई और कोलकाता विश्वविद्यालय में लंबे समय तक भौतिकी पढ़ाई। डॉक्टर बोस विज्ञान को केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं मानते थे, वे विज्ञान के सामाजिक उपयोग और शिक्षा में विज्ञान की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस ने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान का समर्पण दिखाया, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी खोजें आज के युग में क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स की कई शाखाओं में प्रयोग की जा रही है। श्रोताओं, विज्ञान की इस यात्रा में डॉक्टर बोस जैसे वैज्ञानिक हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हैं। आइए हम भी उनके जैसे वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को अपने जीवन में अपनाएं।
2: समय है विज्ञान की दुनिया के आखिरी और आपके पसंदीदा सेगमेंट क्या आप जानते हैं का। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं विज्ञान से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपको हैरान भी कर देंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ साइंटिफिक अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में।
3: क्या आप जानते हैं एक इंसान का शरीर एक दिन में इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि उससे 1 गैलन पानी उबाला जा सकता है। क्या आप जानते हैं मकड़ी का जाला समान मोटाई के स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में

0: कोई पेन रिसेप्टर नहीं होते, इसीलिए दिमाग खुद को दर्द महसूस नहीं करा सकता। ऑपरेशन के दौरान दिमाग को जिंदा इंसान में टच किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है? यह पृथ्वी पर लाल सूर्यास्त के विपरीत है, जो धूल के कणों द्वारा प्रकाश के बिखरने के तरीके के कारण होता है। क्या आप जानते हैं आग का रंग ईंधन के तापमान पर निर्भर करता है? सबसे ठंडी आग लाल रंग की होती है, जबकि सबसे गर्म आग नीली या सफेद रंग की होती है। क्या आप जानते हैं आनुवांशिक रूप से हम केले के साथ लगभग 50% डीएनए साझा करते हैं? क्या आप जानते हैं भले ही बादल हल्के और तैरते हुए दिखते हैं, लेकिन उनमें बड़ी मात्रा में पानी होता है। एक औसत क्यूमुलस बादल का वजन 1 मिलियन पाउंड से अधिक हो सकता है। क्या आप जानते हैं डॉल्फिन एक समय में अपने मस्तिष्क का केवल आधा हिस्सा सोती है? यह उन्हें सोते समय सांस लेने और शिकारियों के प्रति सतर्क रहने की अनुमति देता है। उनके मस्तिष्क का दूसरा आधा हिस्सा जागता रहता है। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के नसों से गुजरने वाले न्यूरॉन्स की सिग्नल स्पीड लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है?
1: ये थी हमारी आज की विज्ञान यात्रा। नई खोजों, रोचक तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरे इस सफर में हमारे साथ बने रहें। याद रखें, विज्ञान न केवल सवालों के जवाब देता है, बल्कि नए सवाल पूछने की प्रेरणा भी देता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बरखा थानवी व्यास का नमस्कार।

ये था विज्ञान के नए आयामों से रूबरू करवाता हमारा मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। आलेख एवं प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, परिकल्पना एवं संयोजन था श्री अमित सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। आलेख और प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की थी। कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का।

हम बताते हैं श्रोताओं की टेलीफोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर आप सुनेंगे दिन में 11 बजे।

बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा, बीकानेर दर्पण।

मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेशन और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने SIR के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली रीनीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत

0: की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
1: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए NWR ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट के मूवमेंट और राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेपुट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
0: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी जन सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ONDC डिजी दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजी ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान रहे हैं
2: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, ये गर्व से ऊंचा हो जाता है।
0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को ये दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में 2 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के MLV कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. दीपक कुमार शर्मा शामिल हैं। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ. प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा

0: योगा डे 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से सेना पुलिस और विभिन्न संस्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे देश के 9 करोड़ 44 लाख किसान लाभान्वित होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कैसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
1: हमारे

0: लेफ्टिनेंट कर्नल कैसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजकुमारी मारू के गाए लोकगीत।

आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को

0: सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजकुमारी मारू के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बुद्धादित्य मुखर्जी का सितार पर राग तोड़ी। तबले पर इनके संगतकार हैं श्री मुकुंद भल्ले।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुद्धादित्य मुखर्जी का सितार वादन। आप सुन रहे थे राग तोड़ी। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। आप इस कार्यक्रम का 19वां एपिसोड सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के

0: अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया। और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए। हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे।

आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर

0: और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप UAE के साथ के अपने FTA को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका

0: एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है, और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट

0: हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था। तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालिया साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हम

0: हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता, जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं, तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है, इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं, बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें, तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं, तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया, जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले, तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है, उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए, तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया

0: और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40 से 60 70 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती है?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम का 19वां एपिसोड प्रसारित हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: चिराग फिल्म का गीत था ये, स्वर लता मंगेशकर का था।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ

0: and watch for free.
1: यादों की बारात फिल्म का ये गीत सुनिए, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के हैं।

0: की पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की।

0: आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।
1: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को बेताब फिल्म में सुनिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की गाई हिम्मत वाला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। सवेरे की ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। कार्यक्रम की सूत्रधार हैं श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और कार्यक्रम का संयोजन है श्री अमित सिंह का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो बीकानेर।

कार्यक्रम हेलो बीकानेर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी अपने निर्धारित समय पर हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम हेलो बीकानेर। कार्यक्रम की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इस बात से की अच्छा है जो अच्छा है मुझे वो याद रहता है, ये है और भी अच्छा, बुरा मैं भूल जाती हूँ। जी बिल्कुल श्रोताओं, हर पल हर क्षण हमारे साथ कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ साथ साथ चलती हैं। अब वो नज़रिए का फ़र्क है हमारा कि हम किसको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर हम अच्छाई को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन प्रसन्न रहेगा, और यदि हम किसी बुराई को अपने आसपास होता देखते हैं तो हमारा मन भी निराशाजनक हो जाता है।

0: अच्छाई को ही अपनाना चाहिए, अपनी आदत में डालना चाहिए, और क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ कहता है, हर पल कुछ ना कुछ नया हमारे जीवन में होता रहता है, और उसमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हमारे सामने आती रहेंगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ स्ट्रेट नहीं होती है। जैसे हमारे हार्ट की बीट भी जिक जैक होती है, वैसे ही हमारी लाइफ भी जिक जैक होती है, और वही लाइफ जब झिकझक होती है तो उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते रहते हैं, अच्छाई बुराई हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे पलों को ही तवज्जो देनी चाहिए। और बुरे पल यदि हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण आ जाते हैं तो उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हमें सामना करना आना चाहिए, ना कि उस बुराई को हम अपने पास ही चिपका कर बैठ जाएं, या उन्हीं बुरे क्षणों को ही हम हर पल याद कर करके अपने आज को खराब ना करें। जिंदगी के पलों में से हम आपके कुछ पल चुरा रहे हैं जी बिल्कुल, जो श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर हमें फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और अपनी पसंद का गीत सुन रहे हैं, उन श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो इस समय कार्यक्रम हेलो बीकानेर अपने रेडियो सेट पे या मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में संयोजन है श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर है आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। तो अब बात करते हैं हमारे आज के पहले श्रोता से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: मैं जय नारायण व्यास, कॉलोनी बीकानेर, राजस्थान से, डॉक्टर अशोक कुमार शाही।
0: जी अशोक जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया से चल रहा है
0: जी। अच्छा चल रहा है सब?
1: हाँ जी
0: जी, बताइए क्या संदेश?
1: देखिए, ये जो प्री मानसून होता है ज्यादा डेंजरस है
0: जी, कैसे बताइए?
1: इसमें क्या होता है कि ये मॉस्किटो की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है और मॉस्किटो अब आने लग गए हैं, तो ये हमारे को बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया है, डेंगू है, तो इन सब से बचने के लिए अभी से हमें मॉस्किटो को रिपेल करने वाली चीजें इस्तेमाल करनी है और इनको दूर रखना है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने।
1: इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको?
0: हाँ जी जरूर।
1: गाँव के अंदर क्या करते हैं, ये केमिकल वगैरह यूज नहीं करते थे। मैं जब कर रहा था काम, तो उसमें क्या करते हैं कि बूर घास होता है, जो दिवाली के अगले दिन उसके गोवर्धन पूजा में काम आता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसको लेकर लोग क्या करते हैं, गाँव के अंदर हथ सुतनी है, गोबर के मकान होते हैं या कच्चे पक्के होते हैं, तो उसके अंदर उसको उसकी झाड़ू बनाकर लगाते हैं, तो उसके अंदर सुगंधित तेल होता है, जिस जो इमिट होता है, वहाँ से स्मेल आती है, तो उससे क्या होता है कि गांव वाले देखते हैं कि सारे मच्छर बाहर और गांव वाले अंदर। और हाँ जी, उसके ऊपर ही मैंने पीएचडी लॉ स्कूल में किया था। उसमें एक केमिकल होता है पाइप्रीटोन, 60-70% ऑयल के अंदर सुगंधित
0: घर से बाहर हो जाते हैं उसकी स्मेल से, खुशबू से,
1: उसे वो क्या वो रिपेल रेपेलेंट है, मॉस्किटो रेपेलेंट है, तो उसको बाहर निकाल देता है।
0: तो वो किस एरिया में होती है वो घास? अपने राजस्थान में होती है।
1: अरे बीकानेर, जोधपुर, ये फलौदी और ये सारा भरा हुआ है गुड़ घास, कॉमन मिलती है।
0: जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अशोक जी।
1: और गांवों के जो विलेज के अंदर खेत होते हैं किसानों के, उसमें भी बहुत खड़ी है, इसको एज ए खतपतवार समझ के फेंकते थे, तो मैंने इसी को पर काम करने का प्लान किया था पीएचडी की।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया आपने और बहुत अच्छी जानकारी आपने आज हमसे साझा करी कि ये जो घास जिससे हम गोवर्धन पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत ही बहुमूल्य, इसको कह सकते हैं कि हम
1: इतने जी, अब तो इसका जो
0: अगर हम झाड़ू ना भी लगाएं तो भी हम इस घास को घर पे लाके रख सकते हैं, तो भी उसकी सुगंध से, खुशबू से मच्छर जो है वो हमारे घर में एंट्री नहीं करेंगे,
1: बना के धुएं से भी वो चले जाते हैं।
0: जी जी जी,
1: अगर इसकी वो धुनी बना के घर के अंदर फेरे,
0: अगरबत्ती की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी,
1: और गांव में तो अभी तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: हमारे गांव तो पारंपरिक रूप से जो भी जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं उनको आज भी फलीभूत किए हुए हैं। शहर में रहते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। रिसर्च किया अशोक जी आपने,

0: बहुत अच्छी जानकारी हमसे आज साझा की है। और अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: एक राज खोसला की फिल्म थी वो कौन थी, उसके सभी गाने वैसे तो अच्छे हैं, तो लता जी के पसंद का गाना भी है, हमारी भी पसंद का है, और आप सबकी लग जा गले फिर भी ऐसी मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, कुछ इस तरह से बोले उसके।
0: जी बेहद ही खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है अशोक जी, और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी मैं नमस्ते, रानी बाजार से रानी झा बोल रही हूँ।
0: जी रानी जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया है आज।
1: जी मैम, वो कभी लग नहीं पाता, कभी उठाया नहीं जाता।
0: जी बिल्कुल, आपने ट्राई किया लेकिन आपका फोन यहाँ पर शामिल नहीं हो पाया। खैर, आज आपने ट्राई किया और आपका फोन बहुत जल्दी लग गया।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: कार्यक्रम में आप शामिल हो गए और आपकी और हमारी आज बातचीत हो रही है।
1: हाँ जी मैडम
0: जी, तो बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है इन दिनों, क्या हलचल है आपके?
1: मैडम सब ठीक है, अब थोड़ी गर्मी कम हुई है।
0: जी बिल्कुल, प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, कह सकते हैं कि भाई बारिश का जो दौर है वो एक दिन छोड़ के सही हो रहा है। थोड़ी ठंडक जो है बारिश की वजह से अब हमारे बीकानेर शहर में लौट आई है।
1: हाँ जी मैम।
0: और बताइए, आज आप कोई संदेश देना चाहेंगी?
1: जी मैम, यही है कि अब जैसे गर्मी में भी, ज्यादा गर्मी में पक्षियों का भी ध्यान रखा जाए, उनके पानी और दाना वगैरह क्या ये ध्यान रखना चाहिए।
0: जी वो तो हर मौसम में, मैं तो कहती हूँ ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि कई एक कहते हैं ना कि छोटी छोटी जो चिड़ियाएं हुआ करती थी, वो उसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त तो होने की कगार पर है। और
1: बिल्कुल मैम,
0: और हमें अगर इन पंछियों को बचाना है तो इन्हें हमें हर मौसम में इनकी केयर हमें करनी है।
1: बिल्कुल मैम, गर्मी में मैम पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो मैं ये कहूंगी गर्मी में तो खास तौर पे ध्यान रखा जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: पक्षियों का।
0: जी जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ जी मैम।
0: तो बताइए रानी जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगी?
1: मंजिल मूवी से रिमझिम गिरे सावन।
0: बेहद ही खूबसूरत गीत है। सावन का महीना फिलहाल अभी नहीं आया है लेकिन गाना
1: पास हो रहा है मैम, बारिश के
0: जी सावन के महीने को दस्तक दे रही हैं आप कि भाई बस जल्दी से महीने निकले और फिर सावन का महीना आ जाए और रिमझिम बारिश जो है वो लगातार होती रहे। बिल्कुल, तो आपने बेहद ही खूबसूरत गीत चुना है रानी जी, फिल्म मंजिल से। और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका
0: नम
1: कार्यक्रम हेलो बीकानेर
0: नमस्कार
1: में।
0: नमस्कार मैडम नमस्कार।
1: जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं राजूलाल मेहर, गांव भिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल।
1: जी राजूलाल जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैडम, पानी की इंतजार में है, पानी
1: पानी
0: अभी कम गिरा है।
1: बारिश के इंतजार में हैं आप?
0: हाँ
1: तो बारिश हुई है आपके वहाँ पर कुछ कुछ?
0: हाँ हुई तो है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं हुई।
1: तो प्री मॉनसून ने तो दस्तक दे दी है आपके शहर में,
0: हाँ
1: तो बस इंतजार करते रहिए और आपका इंतजार बहुत जल्द पूरा हो और अच्छे से इस साल भी हमारे यहाँ पर बारिश हो, ताकि खेती बाड़ी जो है आपकी वो अच्छे से पनपे, लहराए और जो धान है वो भी अच्छे से पैदा हो। जी बताइए, आज आप क्या संदेश देंगे?
0: काम समय पर कीजिए, काम समय पर होने आता है तो मतलब क्या है कि बाद में पछतावा नहीं होता।
1: तो आप बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: लम्हे का सुना देना, मेघा रे मेघा
1: ने हमें कॉल किया, शुक्रिया। और अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिओम सर, नमस्कार
1: जी। हरिओम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: जी
1: जी बताइए सुभाष जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, बिल्कुल
1: बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या संदेश लेकर आए हैं आप?
0: संदेश मैं ये लेके आया हूँ कि आप भी कलयुग चल रहा है, पाप भी बढ़ रहे हैं। एक सिर्फ दान रह गया है, लोग दान से थोड़ा ज्यादा दूध दे रहे हैं। जैसे पिछले महीने अधिक मास था, लोगों ने खूब दान पुण्य किए, लेकिन एक तरफ तो दान देते हैं, दूसरी तरफ पुण्य पाप करते हैं। सॉरी, पाप लोग क्या है, छुपाते हैं, उससे छुपाने से बढ़ता है। और पुण्य छुपाओगे तो बढ़ेगा, और पुण्य बताओगे तो घट जाएगा, और पाप बताओगे तो वो भी घट जाएगा। तो इसको मिटाने के लिए आपको कथा सुनो, कीर्तन करो, दान करो, इंद्रियों पर विजय पाओ।
1: जी बिल्कुल,
0: सब करते हो इंद्रियों है।
1: जी बिल्कुल सुभाष जी, आपने सही कहा। और कहा जाता है कि पांच चोर हमारे भीतर ही बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत से। तो हमारे भीतर ये पांच चोर बैठे हैं। अगर हम कोई अच्छा कर्म कर भी रहे हैं और इन पांचों पर यदि हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ है, तो ये पांच चोर हमारे उस कर्म को निष्फल कर देते।
0: तरीका यही है कि ज्ञान जी कितनी बार मर्जी जीती, जितनी बार आप पीते हो रोज, वैसे कथा भी रोज सुनो।
1: जी बिल्कुल,
0: कथा सुनने से पाप करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा
1: सही
0: सा समय दे दो, ये नहीं कि सात दिन सुनो, आप एक घंटा जाओ।
1: जी बिल्कुल, हम इन पांच चोरों को यदि कंट्रोल करके रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्म को अच्छे से करते चले जाते हैं और हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, एक ठहराव आता है।
0: बिल्कुल, पर आप चिंता नहीं करो ना, चिंतन करो भगवान का। भगवान कहते हैं चिंतन करो, चिंता मत करो। हर आदमी आप इंटेंशन में है, जिसको भी देखो वो दुखी है, दुखी नहीं है, लेकिन दुखी इसलिए कि वो पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आया जो अभी भोग रहा है। मैं हूँ चाहे वो कोई भी, आप हो कोई भी हो।
1: जी बिल्कुल सही कहा सुभाष जी। अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुने?
0: हाउस नंबर 44, हेमंत कुमार की आवाज, एक सुना दीजिए।
1: जी जी बिल्कुल, हेमंत कुमार का गाया ये गीत है। और अब हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: बहन जी नमस्ते।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: गांव खोकरावाड़ी से विनोद बारा से बोल रहा हूँ।
1: जी विनोद जी कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया बहन जी, आपके प्रोग्राम सुनते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं और खुशी की बात तो ये है कि हमारे बारिश भी होगी।
1: जी बिल्कुल, आप हमारे नियमित कार्यक्रम सुन रहे हैं और रेडियो के साथ साथ आप बारिश का भी आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्षेत्र में काफी बरसात हुई है बीकानेर में और हमारे भी काफी बरसात होगी।
1: तो प्री मानसून की दस्तक हमारे पूरे बीकानेर संभाग में हो चुकी है और आप उसका आनंद ले रहे हैं रेडियो के साथ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
0: बहुत खुशी की बात है बहन जी, तो खेतों में रौनक सी आ गई है।
1: तो खेतों में बिजाई और काम कर लिया है बिजाई का?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मूंग और बाजरे की खेती का काम करना है, बाकी है वो बारिश हो गई है तो कुछ लोग बिजेंगे।
1: आप किस चीज की खेती कर रहे हैं?
0: हमारे यहाँ तो नर्मा कपास की भी खेती होती है, वैसे हमारे पानी की किल्लत रहती है तो अनुपुर क्षेत्र में तो बाजरी मूंग ग्वार की खेती बेचते हैं जो कम पानी की फसलें होती है।
1: जी जी जी, तो अच्छी बात है कि आपके जो भी मौसम या मिट्टी या पानी के अकॉर्डिंग आप जो खेती करते हैं वो आपकी खेती अच्छी होती होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी होती है मूंग बाजरा और ग्वार की खेती, बढ़िया खेती होती है हमारे यहाँ और जो भूमि है वो मानती भी है।
1: तो आप बताइए विनोद जी, क्या संदेश देंगे आज?
0: संदेश तो यही है कि अब मैं तो बधाई देना चाहूंगा पहले तो आकाशवाणी के पूरे स्टाफ को कि 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिले और जो श्रोता सुन रहे हैं वो फायदा उठाएं इनका, क्यों बहुत अच्छे से प्रोग्राम होते हैं, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम होते हैं, मनोरंजन के साथ साथ काफी जानकारी हमें मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ही बढ़िया हमें अच्छे लगते हैं प्रोग्राम बीकानेर के, तो मैं तो नियमित सुन रहा हूँ और सुनने वालों को भी कहूँगा आप भी सुनिए। आप तो दी ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत सुना दीजिए, पहला पहला वो मुलाकातें।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है विनोद जी, और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
0: ओके बहन जी।

0: हेलो
1: हेलो आकाश भाई, ढोला मार चैनल फोनिंग कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल सही जगह आपने कॉल किया है मंसूर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि बचपन में माँ जल्दी उठा दिया करती थी और अब जिम्मेदारियाँ जल्दी उठा दिया करती है।
0: जी जी बिल्कुल, जल्दी उठना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।
1: जी जी,
0: जिम्मेदारियां तो वक्त के साथ सबके साथ ही बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से हमें घबराना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है डट के।
1: सर आकाशवाणी के सितारे भी ऐसे ही है कि हमारे साथ, मतलब रात में तो सितारे चमकते हैं मगर दिन में आकाशवाणी हमारे साथ दिन भर चमकता रहता है।
0: जी जी बिल्कुल, आकाशवाणी ऐसा ही है, रेडियो एक परिवार का हिस्सा है जैसे, वैसे लगता है ना कि हम सुबह उठते ही जब रेडियो स्टार्ट करते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना काम भी करते चले जाते हैं और रेडियो से अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और जो सूचना समाचार के माध्यम से हमें चाहिए होती है वो भी हमें तुरंत मिल जाती है।
1: ये भी एक मैं मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए आंधी बारिश का दौर चल रहा है।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी, तो ऐसे मौसम में कि आप जानती हैं मतलब सेफ खड़े रहें, आंधी बारिश मतलब जब भी तेज हवा हो या मतलब बारिश हो, ऐसे मौसम में पता नहीं चलता कि किधर से क्या कुछ हो रहा है, सेफ खड़े रहें जहाँ भी रहें आप।
0: जी बिल्कुल, आंधी बारिश का अगर दौर अब चालू हो चुका है और बहुत ज्यादा अगर बारिश का मौसम हो रहा है और हम यदि किसी रास्ते में चल रहे हैं तो एक कहीं पर भी जो भी शेड है उसके नीचे जाके अपनी शरण ले। कहा जाता है कि पेड़ के नीचे ना खड़े हो, पेड़ के नीचे खड़े होना अनसेफ माना गया है।
1: आंधी में भी ऐसा ही है कि भाई आंधी में बाजार वगैरह में होल्डिंग वगैरह लगे रहते हैं तो उससे भी हमें बचकर ध्यान से
0: थोड़ा सा ध्यान से हम खड़े हों, हम कहाँ खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हम ख्याल रखें, बिजली के खंभों का ख्याल रखें, खड्डे नालों का ख्याल रखें अगर हम वाहन चला रहे हैं। अच्छाई और बुराई हर मौसम में रहती है तो बस उसको देखने का नजरिया हमारा कैसा है वो हम पे डिपेंड करता है।
1: जी
0: तो आप बताइए मंसूर जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मुझे गीत तो सुनना है, मुगले आजम फिल्म से कवाली है मैम, मैं किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: मित्र के नाम ले दूं मैं?
0: जी बिल्कुल लीजिए आप अपने संगी साथियों के नाम।
1: फरियाद अली, कालू भाई, राजू भाई, गोपाल भाई, पुरुषोत्तम बंसारिया, गंगा शहर।
0: तो अब आप और आपके संगी साथी मिलकर सुनिए इस गीत को, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: दिल से पूरे आपके इस आकाशवाणी को सभी अधिकारी कर्मचारी सभी को बहुत बहुत बधाई है और धन्यवाद आपको।
1: जी बिल्कुल, आपको भी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई हम देते हैं।
0: हाँ, मानसून की अब इंतजार है बस, अब मानसून का।
1: हाँ बिल्कुल, तो आप बारिश का आनंद ले रहे हैं, गरम गरम पकोड़े बन रहे होंगे आपके घर तो फिर तो बारिश हो और बीकानेर के घरों में पकोड़े ना बने तो फिर बारिश का मजा नहीं रहता।
0: बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं।
1: तो आप बताइए राजेंद्र जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मैं ये अपना पिक्चर का नाम चित्र लिखा, संसार से भागे फिरते हो, ये बोल रहे इसके।
1: बेहद ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही करीब है ये गीत दिल के और हमारे समाज के।
0: जी जी मैडम,
1: आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया राजेंद्र जी। और अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: धन्यवाद। मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र बिड़वालकर बोल रहा था।
1: जी राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी बढ़िया हैं, अच्छे से हैं। बताइए क्या संदेश लेकर आए हैं आज?
0: संदेश तो ये कि अभी हाल ही में 90 वर्ष पूरे के रेडियो ने इसके लिए

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: जी नमस्कार जी।
1: जी बोलिए, कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं?
0: मैं बोल रहा हूँ मूलचंद सोनी, बीकानेर।

0: मूलचंद सोनी जी बोल रही हैं बीकानेर से।
1: बीकानेर बंगला नगर से।
0: जी जी बीकानेर बंगला नगर से आप बोल रही हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया एकदम, आपकी दया है।
0: तो आज आपका कॉल पहली बार लगा है?
1: पहली बार बहुत कोशिश किया, काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ मैं।
0: तो आज आपकी जो कोशिश थी वो सफल हो गई?
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो आपकी और हमारी आज बातचीत हो रही है, तो कैसे लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए आज क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी बहुत है, कबूतरों के लिए पानी रखो, चिड़ी के लिए रखो, थोड़ा दाना रखो थोड़ा उनके लिए। अगर कोई पशु गाय है तो उनके लिए थोड़ा पानी पिलाओ उनको।
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: सही
1: अच्छा लगेगा।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि हमें तो अपना ख्याल रखना ही है, साथ ही साथ अपने आसपास जो पशु पक्षी हैं उनका भी विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है, डेली रूटीन में नियमित रूप से।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बहुत रंग का काम है, बहुत अच्छी बात है ये तो।
0: बिल्कुल।
1: तो और अभी बरसात का मौसम है तो पानी पानी गलियों में भर जाता है, उसकी साफ सफाई रखो, मच्छर ना हो उसमें।
0: बिल्कुल, स्वच्छता रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारे आसपास यदि स्वच्छता रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा और जो बारिश का आनंद है वो भी हम पूरी तरह से ले पाएंगे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो आप हमारे नियमित कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो हमारे रेडियो से जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें कॉल भी करते रहिए। और अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: जी जी, जन्म जन्म का साथ है हमारा फिल्म, ये आपने गीत चुना है फिल्म भीगी पलके से। बेहद ही खूबसूरत गीत चुना है आपने और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: सर नमस्कार
0: जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
1: गोपाल नाथ सर
0: जी। गोपाल नाथ जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभनी महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से आप बात कर रहे हैं और आपका कॉल आज पहली बार लगा है?
1: हाँ पहली बार लगा है कॉल
0: जी। तो बहुत बहुत आपका स्वागत कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: बहुत खुशी हो रही है
0: जी। तो हमें भी खुशी हो रही है कि हमारे नए श्रोता आज हमसे जुड़े हैं। तो बताइए कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ सुनते हैं
0: जी। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: हम खेती करते हैं
0: जी। तो खेती बाड़ी आप करते हैं तो अच्छे से आप काम चल रहा है आपका?
1: हाँ
0: जी। तो बताइए क्या संदेश देंगे आज आप? बारिश का मौसम है आपके वहाँ पर?
1: बारिश तो नहीं है, दो तीन दिन पहले थोड़ी गिरी थी, अब नहीं है बारिश
0: जी। तो बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत दिल तो पागल का।
0: दिल तो पागल है का आपने गीत पसंद किया है, टाइटल सॉन्ग?
1: हाँ टाइटल सॉन्ग।
0: तो आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया गोपाल जी। और अब सुनिए हम आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: ये था श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर पसंद आया होगा। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप अपना फोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बुधवार समय दिन में 11 से 12 बजे तक हमारा फोन नंबर है 0151-252-8041, 0151-252-8042। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम में संयोजन था श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। और अब कार्यक्रम को संपन्न करते हैं यहीं पर। फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम हेलो बीकानेर में। और अब दीजिए आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा को इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास के और संयोजन श्री अमित सिंह का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मानो चैनल है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारु चैनल है। 12 बजने को ही कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के माफ कीजिएगा आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम

0: बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारो चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

की सभा में दिन में एक बजकर 5 मिनट पर बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे सरकार के 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए योग से स्वास्थ्य लाभ। साथ ही आप सुनेंगे कार्यस्थल पर उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समिति और विश्व शरणार्थी दिवस। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता महिलाओं में योग के लाभ और महत्व। वार्ताकार होंगी श्रीमती कल्पना शर्मा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं हमारी सभा में दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर।

शाम 3:55 पर हमारी विशेष सभा आरंभ होगी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने का सीधा प्रसारण कार्यक्रम की समाप्ति तक। संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा योग, इसकी तकनीकें, आसन और लाभ। लघु जानकारी के विषय रहेंगे विश्व शरणार्थी दिवस, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय एकता के 12 वर्ष, महिला क्रिकेट और बुकर पुरस्कार। साथ ही सुनेंगे एक भेंट वार्ता, व्यस्त जीवन शैली और योग विषय पर श्री मुदित कोठारी की वार्ता, और इनसे बातचीत करेंगे श्री सुश्री सुखमनी कौर। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 6:05 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक गीत। संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज आप सुनेंगे कार्यक्रम फरमाइशी पत्रों पर व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर दर्पण, बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर, और फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। अब समय है सुगम संगीत का। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार हैं भाई गुमरे सिंह रागी। तो आइए सुनते हैं इनके गाए कुछ भजन।

सुमन संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भाई गुरमीत सिंह रागी के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मिजोरम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में श्यामजी घनश्यामजी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है साजन दहलवी ने और गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है ठोकर।

जयदेव के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था जानिसार अख्तर ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म थी प्रेम पर्वत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत को लिखा है शाहिर लुधियानवी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है दाग।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1 बजने को है कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल
2: से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के जनपथ से 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक ई बसों के संचालन से राजधानी में प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
3: हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा।

0: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई है, जो इस कुल मिलाकर के 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य BLO के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबू राज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस बीच प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने अपने जयपुर स्थित आवास पर योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा नई पीढ़ी के ऐसे विशेष बायोमार्कर्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी मदद से उपचार शुरू होने से पहले ही ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज की कीमोथेरेपी पर कितना असर होगा। और अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
2: शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शोध भविष्य में कैंसर उपचार को अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बनाने के साथ ही मरीजों की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बैने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं कोमल पुरोहित और डॉक्टर शर्मिला।

0: हर मुलाकात के साथ और गहरे हो जाते हैं और कुछ बातें ऐसी होती है जिनका इंतजार हर दिन रहता है। नमस्कार बहनों।
1: नमस्कार, मैं हूँ शर्मिला।
0: और मैं हूँ कोमल। हम फिर लेकर आए हैं आपका अपना साथी, आपका अपना मंच महिला जगत।
1: हम दोनों मिलकर करेंगे आपसे दिल की बातें, आपके जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा और साझा करेंगे बहुत सारी जानकारियां जो आपके और आपके परिवार के लिए होंगी बेहद खास।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य से लेकर बच्चों की परवरिश तक, बदलते समाज से लेकर प्रेरणादायक अनुभवों तक, महिला जगत में हर बात होती है आपके लिए और आपके अपने अंदाज में।
1: और सबसे खूबसूरत बात, इस कार्यक्रम की असली पहचान है आप, हमारे श्रोता और आपका स्नेह, जो हमें हर बार कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल, तभी तो आपसे प्रेरित होकर हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा मनोरंजन। लेकिन उससे पहले चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा

0: बिल्कुल बहनों, आप सभी को, सभी से बात करके, आप सभी से
1: रूबरू होकर,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
0: लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है। अब जब बहनों की बात चल रही है शर्मिला, तो एक बात है, जैसे वो जो कभी चूल्हे की आंच में अपने सपने समेट लेती थी, आज उन्हीं सपनों को अपने हौसलों के पंख लगाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है।
1: यही तो बदलते भारत की तस्वीर है, क्यों?
0: बिल्कुल, और इसी तस्वीर के केंद्र में है नारी शक्ति। कभी घर की चौखट तक सीमित मानी जाने वाली नारी, आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर संसद के गलियारों तक अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परिचय दे रही है शर्मिला।
1: बिल्कुल, क्योंकि समय बदल गया ना,
0: सोच बदल गई है, और इस बदलाव के साथ महिलाओं के सपने को नई उड़ान देने के प्रयास भी निरंतर हुए हैं।
1: और कोमल, पता है क्या है? जब एक महिला सशक्त होती है ना, तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार और यहाँ तक कि समाज और राष्ट्र की भी प्रगति उसकी नई राह पर आगे बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी सोच को आधार बनाकर पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण जो पहलें हैं वो की गई हैं।
0: बिल्कुल, बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने तक विभिन्न जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास भी किया गया शर्मिला।
1: तो आइए आज के महिला जगत में चर्चा करेंगे पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुए प्रयासों, उपलब्धियों और उन परिवर्तनों की जिन्होंने देश की महिलाओं को नई ऊर्जा दी, नया विश्वास दिया और नए अवसर प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त किया।
0: बिल्कुल शर्मिला, यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा का जो विषय है वो सामने आता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि शिक्षित महिला न केवल स्वयं को जागरूक, मतलब वो खुद जागरूक होती है, बल्कि आने वाली जो उसकी पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, उनको भी सशक्त बनाती है। और इसी सोच के साथ जो है वर्ष 2015 में सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और शिक्षा को बढ़ावा देना था।
1: और कोमल, पता है क्या, इसी प्रकार जो महिलाएं जो होती है ना, उनकी आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है उसको मजबूत करने के लिए भी सरकार समय समय पर कई योजनाएं लाती है, जैसे जनधन योजना लेके आई थी, है ना, मुद्रा योजना, या स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने जैसे भी प्रयास किए जाते रहते हैं। समय समय पर सरकार इस तरह की प्रावधान लाती रहती है, और आज लाखों महिलाएं स्वयं

0: रोजगार और छोटे उद्यमों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और खुद भी तो रोजगार ले रही हैं और दूसरों को भी बहुत सारे रोजगार उपलब्ध करवा रही
1: हैं। बिल्कुल, और महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सरकार। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण भी मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी जो सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास भी जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किया गया है। साथ ही वहीं आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और सुलभ भी बनाया है
0: और महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: और पता है कोमल, इससे ना सबसे ज्यादा जो लाभान्वित क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं ना, क्योंकि उनको इतनी अच्छी चीज ये मिली है ना कि सब नहीं तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह ही चले जाना है कि मतलब उनके पास दिन में तो जा नहीं सकते, मतलब ये भी कोई टाइम नहीं होता ना कि कभी भी चले जाएं। और एक दूसरी चीज उज्ज्वला योजना जो हमारी सरकार लेके आई है, उनसे हमारी बहनों की आंखों को बड़ी राहत मिली है कि धुएं से जो उनकी आंखें खराब हो जाती थी या आजकल की जो गर्मी पड़ रही है उसमें हम कहें कि बाहर जाके चाय वाय बनाने में जो भी परेशानियां आती थी
1: वो सब
0: है ना।

0: सुबह सुबह ही चले जाना है कि मतलब उनके पास दिन में तो जा नहीं सकते, मतलब ये भी कोई टाइम नहीं
1: हाँ
0: होता ना
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल
0: कभी भी चले जाएं। और एक दूसरी चीज, उज्ज्वला योजना जो हमारी सरकार लेके आई है, उनसे हमारी बहनों की आंखों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: धुएं से जो उनकी आंखें खराब हो जाती थी, या आज की जो गर्मी पड़ रही है उसमें हम कहें कि
1: बहुत
0: बाहर जाके
1: गर्मी,
0: चाय वाय बनाने में जो भी परेशानियां आती थी,
1: वो सब
0: उन
1: सही हो
0: है ना
1: चुकी है।
0: सरकार ने जो रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, उनसे भी हमारी बहनों की बहुत सारी परेशानियां जो है वो दूर हुई हैं।
1: बिल्कुल। और शर्मिला, आज महिलाएं सेना, पुलिस, विज्ञान, खेल, अंतरिक्ष, राजनीति और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अपनी नई पहचान भी बना रही है। साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
0: और अगर हम देखें कि पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, क्योंकि समाज में जो महिलाओं की भूमिका है या उनके प्रति सोच है, उसमें भी हमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी हम लगातार बढ़ती हुई देख रहे हैं।
1: बिल्कुल। और साथ में नारी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं मानी जा रही, बल्कि परिवर्तन की वाहक भी मानी जाती है। अब उसे अवसर, सम्मान और विश्वास मिलता है तो वो स्वयं के साथ साथ पूरे समाज को नई दिशा देती है।
0: और इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत जो नारी शक्ति के इसी जज्बे को सलाम करता है।
1: बिल्कुल।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: शर्मिला, नारी शक्ति के इसी उत्साह और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है स्वस्थ शरीर और शांत मन, है ना?
9: बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल मन का शांत रहना तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरी है।
8: बिल्कुल, क्योंकि कहा भी गया है ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब बात स्वास्थ्य की हो तो योग से बेहतर साथी शायद ही कोई होगा, है ना?
9: बिल्कुल, क्योंकि हम मनाने भी तो जा रहे हैं कल योग दिवस, है ना? तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं वो घर को भी संभालती हैं, परिवार भी, और क्योंकि काम भी करने जाती हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाती हैं, है ना? ऐसे में वो अपने लिए टाइम शायद निकाल ही नहीं पाती, है ना? अपने स्वास्थ्य पर तो वो ध्यान ही नहीं दे पाती। तो योग एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जो न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी देती है, जिससे हमारा आत्मिक संतुलन भी जो है

0: वो बना रहता है, इसलिए हमें महिलाओं को जरूर करना चाहिए
1: बिल्कुल ना। और शर्मिला हमारे जो ऋषि मुनि है ना वो भी हजारों वर्ष पहले योग के महत्व को समझा चुके हैं और आज पूरी दुनिया इसे मानती भी है। और साथ में महिलाओं के लिए योग विशेष रूप से लाभकारी भी माना जाता है क्योंकि नियमित योगाभ्यास शरीर को लचीला बनाता है, साथ में मांसपेशियों को मजबूत करता है और ऊर्जा का जो संचार है वो भी करता है।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज जो आज के समय में है तनाव और चिंता,
1: बिल्कुल
0: ये इतनी बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं लोगों में, अवसाद जैसी समस्याएं ऐसी आ गई हैं जिसमें उनके काम करने की क्षमता ही शायद कम हो गई है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो इससे इन बीमारियों को भी हम प्राणायाम और ध्यान से अपने मन को शांत रख सकते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और योग अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं हम आसपास के जीवन को भी बहुत ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ में महिलाओं के जीवन में हार्मोनल चेंजेस तो नॉर्मली है, कभी कुछ चलता ही रहता है हम महिलाओं में, जैसे मासिक धर्म आना, आजकल तो आपने सुना होगा मासिक धर्म पहले ही आ जाता है बच्चों को, बहुत जल्दी
0: उम्र में जो लड़कियां हैं वो इस तरह की समस्या,
1: बिल्कुल, और गर्भावस्था हुआ, रजोन निवृत्ति हुई, जैसे कई पड़ाव आते हैं महिलाओं के जीवन में, तो योग इन जो अवस्थाएं हैं उनमें जो होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियां उसे कम करता है, उसमें हेल्प करता है हमारी बहुत ज्यादा। हालांकि किसी भी विशेष स्वास्थ्य समस्या या गर्भावस्था की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है।
0: हाँ, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति हो जिसका तो मतलब समझ जरूरी नहीं हो और हम उल्टा कर लें, इसे जरूरी लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और भी बहुत सारी बीमारियां हैं कोमल, जैसे कमर का दर्द है, चाहे गर्दन का दर्द है, और सबसे बड़ी समस्या जो आज की आम हो गई मोटापे की समस्या,
1: बहुत
0: है ना, हर महिला इसी बात से परेशान है कि मोटापा हो गया है, और उच्च रक्तचाप जैसे जेंट्स में तो ये सबसे ज्यादा रहता है ना, इसीलिए हार्ट अटैक जैसी समस्या, ये उच्च रक्तचाप ही जो है जो इसको बढ़ावा दे रहा है, तो इन सब चीजों के लिए भी योग बहुत जरूरी है। अगर हम सूर्य नमस्कार डेली करते हैं, ताड़ासन करते हैं, भुजंगासन, वज्रासन और अनुलोम विलोम जैसे बहुत सारे अभ्यास हैं जिनसे हमारे शरीर को भी और मन को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और योग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है शर्मिला, कि इसके लिए ना तो कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, ना हमें कोई खर्चा लगता है, दिन में केवल आपको क्या है 20-30 मिनट का नियम अभ्यास करना, और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर आपको कोई जगह पे जाना है, आप अपने छत पे जाके कर लीजिए, जब आपको समय मिले तब कर लीजिए, आपको शुरुआत करनी है केवल।
0: बिल्कुल,
1: और जैसे ही आप शुरुआत करोगे बस आपको उसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
0: और कोमल, एक स्वस्थ जो महिला होती है ना उसका परिवार जो है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो जब स्वस्थ रहेगी ना तो उसका मन करेगा कि वो सबको भी स्वस्थ रहे, वरना वो खुद ही आल से भरी रहेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो वो किसी को भी है ना, तो उसको देख करके घर के बाकी सदस्य भी आलस से भर जाएंगे, इसलिए दूसरों की देखभाल के साथ साथ उसे अपना ध्यान सबसे ज्यादा मैं मतलब प्राथमिकता में होना चाहिए महिला का अपना ध्यान।
1: और शर्मिला, योग केवल जो है वो व्यायाम नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है, यानी कि इसको अपनी जीवन शैली में आपको डालना ही है। जैसे हम सारी चीजें करते हैं अपने जीवन, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, तो इस योग को भी जो है वो आपको अपने जीवन शैली में डालना ही,
0: मतलब सेकेंडरी चीज नहीं बनाना। हाँ, जैसे हम लोग बाकी काम तो हमें लगता है कि करना जरूरी है लेकिन योग कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि जैसे रोटी खाना, चाय पीना, जितना चाय के लिए ज्यादा कह सकते हैं लोगों को आजकल चाय का नशे, जैसे तुम भी अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि आज तो यार चाय, तो मुझे लग रहा है कि ये चाय वाला जो है ना इसी तरह से होना चाहिए कि यार आज
1: जिस तरह चाय की चुस्कियों में मजा आता है उसी तरह आपको योग भी करना चाहिए और आपको योग में भी मजा आने लगेगा।
0: बिल्कुल, तो इसी सकारात्मक संदेश को सुनना मतलब हमने बहनों तक पहुंचाया और उम्मीद भी करते हैं हम अपनी बहनों से कि वो इसको अपने जीवन में लागू भी करेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ये बातें हमारी बहनों के साथ चलती रहेंगी, लेकिन सुनवा देते हैं अपनी बहनों को ये मधुर सा गीत।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: Akashvani at 90.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मैंने अभी हमने योग के महत्व के बारे में बहुत सी जानकारियां ली, साथ में विभिन्न लाभों के बारे में भी हमने जाना, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हम आपको एक वार्ता सुनाएंगे और विषय है महिलाओं में योग के लाभ और महत्व, और इसकी वार्ताकार हैं श्रीमती कल्पना शर्मा।
1: योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन या जोड़ना ही योग है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति हर चिंताओं से मुक्त सहजता और सरलता के साथ अपने समस्त चक्रों को साध लेता है एवं मस्तिष्क को एकाग्र कर अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर लेता है। इसके लिए योग सबसे अच्छी और कारगर विधि है। योग से आध्यात्मिकता, ज्ञान, एकाग्रता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ये भारतीय ज्ञान की 5000 साल पुरानी शैली है। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते मरोड़ते खींचते हैं और सांस लेने के जटिल तरीके अपनाते हैं। वस्तुतः ये केवल मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा करने वाले इस गहन विज्ञान के सबसे सतही पहलू हैं। योग विज्ञान में जीवन शैली का पूर्ण आत्मसात किया गया है। दूसरे या आसान शब्दों में कहें तो योग सिर्फ व्यायाम या आसन ही नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक एकीकरण और रहस्यवादी तत्व का स्पर्श लिए हुए एक आध्यात्मिक ऊंचाई है, जो आपको सभी कल्पना से परे की कुछ एक झलक देता है। महिला हो या पुरुष, योग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। योग के अनेकानेक फायदे हैं, इसीलिए योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके जरिए आप न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। योग परिस्थितियों के अनुरूप किया जाता है, यानी यदि आप बीमार हैं या कोई गंभीर रोग है तो आपको कुछ योगासन करने की मनाही होगी। इतना ही नहीं, गर्भावस्था जैसी स्थितियों में भी आपको योगासन के दौरान काफी सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिलाओं के लिए योगासन कौन कौन से हैं, महिलाओं को कब कौन से आसन करने चाहिए और कौन से नहीं, साथ ही साथ महिलाओं के योग के लाभ कितने हैं। महिलाओं को अपनी आवाज को सुरीला बनाने और श्वास संबंधी समस्याओं से बचने के लिए श्वास क्रिया करनी चाहिए। जो महिलाएं अपने खाने के बाद टहल नहीं पाती और मोटापे और पेट संबंधी समस्याओं से भी बचना चाहती है तो उन्हें वज्रासन करना चाहिए। शवासन महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि शरीर को आराम देने और तनाव मुक्ति व थकान उतारने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है। जो महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती और योगासन को भी कम से कम समय देना चाहती है तो उन्हें सूर्य नमस्कार की 12 विधियों को करना चाहिए। इससे न सिर्फ पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है बल्कि आप तरोताजा भी रहते हैं। महिलाओं को पुरुष के मुकाबले बढ़ती उम्र के साथ अधिक बीमारियां हो जाती है। यदि महिलाएं रोजाना योग का सहारा लें तो उन पर न सिर्फ अंकुश अपितु धीरे धीरे छुटकारा भी मिल जाता है। महिलाओं में देखा गया है कि उन्हें छरहरी काया और फिटनेस की फिक्र रहती है, लेकिन उनके पास सरल और आसान उपाय नहीं रहता। योग इस समस्या का एक अचूक और सरल उपाय है। गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को स्वस्थ रहने की अति आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे का विकास भली प्रकार से हो सके। साथ ही साथ योग के जरिए प्रसव के दौरान और बाद में आने वाली समस्याओं से भी बचा जा सकता है। आमतौर पर महिलाएं अपनी सुंदरता को लेकर अत्यधिक जागरूक होती है, लेकिन हर वक्त अपनी सुंदरता पर ध्यान देना संभव नहीं होता और स्वस्थ तन और मन में सुंदरता स्वतः ही दिखाई देने लगती है। बदलते सामाजिक परिवेश के बीच आज महिलाएं पहले से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी हो गई है। आज महिलाओं की भूमिका उनकी पारंपरिक घरेलू माँ या बेटी से बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर आर्थिक, सामाजिक,

राजनैतिक और सभी क्षेत्रों के लिए जा रहे फैसलों में अपनी बराबर की भूमिका निभा रही है। यद्यपि महिलाओं को अपनी सभी भूमिकाओं को ठीक तरह से निर्वहन करने के लिए जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मानसिक शांति बनी रहे और जीवन में भी उनका संतुलन बना रहे, जाहिर तौर पर यह सभी योगासनों के चमत्कार से ही संभव हो सकता है। प्रकृति के लिहाज से भी कई मायनों में आज महिलाओं की भूमिका पुरुषों से बढ़कर है। किशोर अवस्था से लेकर मातृत्व, मोनोपॉज की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक महिलाएं कई दौरों से गुजरती है। शारीरिक बदलाव के साथ साथ उनकी मानसिक परेशानी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से जीवन में असंतुलन आता है। ऐसे में महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव में उनके लिए नियमित रूप से योग करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रह सकता है। मोटापे की समस्या आज आम बात है। मोटापा अपने आप में बीमारियों की बड़ी वजह है। सूर्य नमस्कार, कपालभाति और प्राणायाम की सहायता से इस समस्या को निजात पाया जा सकता है। हम सभी लोग आंतरिक शांति की तलाश में धार्मिक स्थान व प्राकृतिक परिवेश में जाना पसंद करते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत योगासनों के साथ की जाए तो निश्चित तौर पर आंतरिक और मानसिक शांति बनी रहती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास और विकास होता है। उच्च रक्तचाप, शुगर, अनिद्रा, लीवर और दिल संबंधित बीमारियां आज आम बात हो गई है। जिससे भी मिलो उनमें से अधिकतर किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन नियमित योगा सभी असाध्य बीमारियों पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आज की नारी अपने आप का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही लक्ष्य की ओर नहीं कर पा रही, लेकिन ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा प्रदान करने और एकाग्रता बढ़ाने में योग बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही साथ आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवारों पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है। व्यस्तम जिंदगी की वजह से महिलाएं स्वाभाविक तौर पर गुस्से की शिकार हो रही है। इसका असर न केवल उनके कामकाजी रिश्तों पर हो रहा है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ रहा है। लेकिन योग के जरिए जीवन में और मन की शांति का अनुभूत किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम होते होते इतनी थकान हो जाती है कि किसी काम को करने की शक्ति और इच्छा दोनों ही खत्म हो जाती है। लेकिन योग आंतरिक ऊर्जा को पूर्ण रूप से नियोजित कर संचारित करता है, जिसकी वजह से शरीर में स्फूर्ति रहती है। जब शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ आंतरिक शक्ति का विकास होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे का अंतर्ज्ञान होता है और हम सही और गलत का फर्क करने में समर्थ होते हैं। प्रातःकालीन ब्रह्म वेला में जब ब्रह्मांड की तरफ से समस्त और पृथ्वी में ऑक्सीजन का संचार किया जाता है, उस वेला में योग और योग से जुड़े प्राणायाम कर अमृत रूपी वायु को ग्रहण करना कितना आत्मिक सुख देता है, ये योग करके ही जाना जा सकता है। क्योंकि महिला ही प्रत्येक परिवार की धुरी है और जब धुरी सही दिशा में घूमेगी तभी तो परिवार और समाज को सही दिशा मिल पाएगी। योग के द्वारा पुरुष, महिलाएं और बच्चे नियमित योगिक क्रियाओं के सहयोग से अपने शरीर को, जो कि ईश्वरीय वरदान है, निरंतर रूप से स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकते हैं। हींग लागे ना फिटकरी की कहावत को चरितार्थ करते हुए बिना किसी तामझाम के कम जगह में कहीं भी इसे किया जा सकता है, पर थोड़ी सी जागरूकता और नियमितता इसका मूल मंत्र है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां हर तरफ चिंता और भय का वातावरण, कार्य की अधिकता, नियमित रूप से अपने शरीर की सांस संभाल का अभाव, रहन सहन, खान पान आदि में बदलाव, अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार करने की चाहत महिलाओं और लड़कियों में इस कदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे दूर करने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े चिकित्सकों को सलाह लेकर अलग अलग दवाइयों का सेवन कर लाखों रुपए अवसाद को खत्म करने के लिए लगा देती हैं, जबकि सदियों से चले आ रहे योग को नियमित रूप से कर ले तो शायद लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ही न पड़े। परिणाम तो शत प्रतिशत सकारात्मक ही मिलेगा। चरक संहिता में योग के महत्व को बहुत अधिक बताया गया है। योग का संबंध मन और आत्मा से होता है, इसलिए प्राणों को अगर यौगिक और प्राणायाम की क्रियाओं से महिलाएं साधने में जागरूकता दिखाए तो वो अपने कार्यकुशलता और लक्ष्य को जितने आसानी से प्राप्त कर सकती है उसे बयान नहीं किया जा सकता। यदि महिलाएं किसी मर्मज्ञ व्यक्ति की निगरानी में योग को सीखें और उसका अभ्यास करें तो आधुनिक सामान्य बीमारियां जैसे अवसाद, चिंता, माइग्रेन, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा आदि अनेकों नेक बीमारियों को आश्चर्यजनक रूप से दूर कर सकती है या उनसे

0: अपनी दूरी बनाकर रख सकती है। योग के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों संस्थाएं कार्य कर रही है और जगह जगह निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ कुशल योग शिक्षकों का निर्देशन मिलता रहता है। योग के सब फायदों को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान सरकार ने 21 जून को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, जिसे संपूर्ण विश्व से मान्यता मिली है, जो कि विश्वव्यापी स्वास्थ्य अभियान का ही एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए हम भी स्वास्थ्य अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता महिलाओं में योग के लाभ और महत्व। वार्ताकार थी श्रीमती कल्पना शर्मा। कैसे योग हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, हम योग से कैसे अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं, आज के बढ़ते खान पान से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो योग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब इनसे जरूर प्रेरणा लेंगे और भी बहुत सारी बातों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। लेकिन सुनते हैं पहले ये प्यारा संगीत।

मेरा कहते हैं दुनिया में अगर सबसे बड़ी दौलत कोई है तो वो है अपना घर। वो घर जहाँ अपनों का साथ हो, यादें हो, सुकून हो और सुरक्षा का एहसास हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को अचानक अपना घर, अपना शहर और अपना देश छोड़ना पड़ जाए तो उस पर क्या बीते होंगे? युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं या उत्पीड़न जैसी परिस्थितियां अगर किसी कई लोगों को अपना सब कुछ पीछे

0: सुनने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही लोगों के साहस और संघर्ष को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है।
1: और कमल, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कभी ये सोच भी नहीं पाते कि बिना किसी गलती के अपना घर छोड़ना कैसा महसूस होता होगा, क्योंकि हमारे साथ तो बीता नहीं है ना। वो कहते हैं जिस उंगली के लगी होती है उसी उंगली को दर्द पता होता है। तो शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें अपनी जान बचाने या सुरक्षित जीवन की तलाश में अपने देश से बाहर जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: ये उनका चुनाव नहीं होता बल्कि उनकी परिस्थितियों की मजबूरी होती है।
0: बिल्कुल, मानव जब कोई अपना घर छोड़ता है तो केवल एक मकान नहीं छोड़ता बल्कि उससे जुड़ी यादें, रिश्ते, बचपन, रोजगार और जाने कितने सपने पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में नए देश और नए माहौल में खुद को फिर से संभालना आसान बिल्कुल नहीं होता।
1: विश्व शरणार्थी दिवस केवल एक दिन नहीं है बल्कि यह उन लोगों के संघर्ष, धैर्य और उम्मीद को सलाम करने का अवसर है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को नए सिरे से शुरू करने का साहस रखते हैं।
0: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाना शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाने में देना कि हर इंसान को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी देश, भाषा या संस्कृति से जुड़ा हो।
1: और बताए कोमल, कई बार हम समाचारों में देखते हैं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अनजान जगहों की ओर निकल पड़ते हैं। उनके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना होता है, न भविष्य की कोई निश्चिंतता होती है, लेकिन फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते और एक बेहतर जीवन की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं।
0: और शायद शर्मिला, यही उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जीवन में नई रोशनी ला सकती है।
1: आज जरूरत है इस बात की कि हम मानवता, सहानुभूति और सहयोग की भावना को मजबूत करें, क्योंकि कभी कभी किसी के लिए एक सहारा, एक मुस्कान या एक संवेदनशील व्यवहार भी बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल, हम सब अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत हमें एक दूसरे से जोड़ती है। विश्व शरणार्थी दिवस हमें यही संदेश देता है कि दुनिया में सबसे बड़ी पहचान इंसान होने की है।
1: तो आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, उनके संघर्ष का सम्मान करेंगे और मानवता तथा भाईचारे की भावना को भी आगे बढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल, और अब इसी संदेश के साथ समय है एक ऐसे गीत का जो साथ मिलकर चलने और एक दूसरे का सहारा बनने की प्रेरणा देता है।

0: मीना कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बने। उम्मीद है आज की हमारी बातें आपके मन को छू सकी होंगी और जीवन में कुछ नया सोचने की प्रेरणा भी दे सकी होंगी।
1: छोटे छोटे प्रयास, सकारात्मक सोच और जागरूकता ही एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां सम्मान हो, संवेदनशीलता हो और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान मिले।
0: बिल्कुल, इन शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशियां और नई संभावनाओं का उजाला हमेशा बना रहे, अब हमें दीजिए अनुमति।
1: फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों, नई जानकारियों और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी

0: 45,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मदन सिंह देव जी, प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश

0: दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्ष

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

मोहम्मद रफी और बलबीर की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म हंसते जख्म का ये गीत। गीत को लिखा था कैफी आजमी ने और संगीत था मदन मोहन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।

लता संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के सुर में फिल्म अभिलाषा का ये गीत। गीत को लिखा है बिजू सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का।

मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म रजनीगंधा का ये गीत। गीत को लिखा था योगेश ने और संगीत था शलिल चौधरी का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मनहर ने। फिल्म का नाम है अभिमान।

मोहम्मद रफी के गाय फिल्म दुनिया के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 3 बज रहे हैं, हमारी ये सभा अब यही संपन्न होती है। शाम 3:55 पर हमारी विशेष सभा आरम्भ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 3:55 हुए हैं, हमारी विशेष सभा आरंभ होती है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने का सीधा प्रसारण।
1: बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है।

0: आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission.

0: Lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, को एक एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब

0: don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो

0: मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
0: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाज़ें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय. और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
2: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
1: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
2: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला.
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
2: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
0: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. भारत केसरी, लह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद, लह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয়, যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না, প্রধান সেবক বলেন, উনাকে বাবা তারকনাথের পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে

0: योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
0: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस स्कीम इज नाउ ऑपरेशनलाइज्ड, इज फंक्शनल, इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इमेजिन what is happening, and now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out, and there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev manch par virajman Rajpal R.N. Ravi ji, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल

नेपाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों

You know, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से

पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी

छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा

का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती दे

0: देनी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। संध्या के 5:32 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: सोचिए एक सुबह ऐसी हो जब आप एकदम निरोगी फील करें, आपका बॉडी एकदम छोटे बच्चे की तरह स्वस्थ मस्त और प्रसन्न फ्लेक्सिबल हो। क्या ऐसा संभव है आपके जीवन में इस उम्र में भी?
1: बिल्कुल संभव है,
0: क्योंकि यदि आप करें योग अभ्यास तो आपका शरीर भी आप पूर्ण लचीला और एक्सपर्ट बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो होस्ट और दोस्त अक्षय आचार्य।
1: और दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुखमणि।
0: साथियों, योग हमारे शरीर में और हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे व्यस्त जीवन में हमारा योग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी विषय पर आज व्यस्त जीवन शैली और योग विषय पर श्री मुदित कोठारी जी से एक वार्ता है, जो कि वार्ता कर रही है सुखमणि कौर। आइए सुनते हैं, जिसकी प्रस्तुति दी है रेवंत राम जी लेघा और संयोजक है श्री अमित सिंह जी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ना केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है, योग। और इसी अवसर पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं योग प्रशिक्षक श्री सी ए मुदित कोठारी जी। सर, आपका स्वागत है आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में। आप एक अनुभवी योग प्रशिक्षक तथा शिक्षाविद हैं सर, इसीलिए सबसे पहले श्रोताओं को अपने बारे में तथा योग के क्षेत्र में अपनी यात्रा के बारे में बताइए।
3: थैंक यू सुखमणि जी। सबसे पहले आकाशवाणी बीकानेर का मैं दिल से धन्यवाद

0: करना चाहूँगा। मैं एक शिक्षक हूँ और रोज बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने समझा कि अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग नहीं, एक शांत दिमाग की आवश्यकता है। और बस यहीं से मेरी योग की यात्रा, या मैं कहूँ योग की तलाश शुरू हुई। जब मैंने योग को अपनाया तो आप मानेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगा कि सारे नॉइस ख़त्म होते जा रहे हैं और एक अलग ही तरीके का फोकस ज़िंदगी में चालू हो गया। अब मेरी ये कोशिश रहती है कि हर युवा के साथ मैं इस जर्नी को शेयर करूं और उनको भी इस आनंदमय जीवन में इस ताल के साथ आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल सर, ये आपने योगा का जो महत्व है हम युवाओं के जीवन में, इसको बहुत सरलता से बताया है। इसी क्रम में मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हर वर्ष 21 जून को भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या महत्व है और यही दिन क्यों चुना गया?
0: जी बिल्कुल, 21 जून जैसा हमें पता है कि वैज्ञानिक आधार पर साल का सबसे लंबा दिन होता है। लंबा यानी सबसे ज़्यादा रोशनी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा, और योग भी हमें यही सिखाता है, अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाना। और मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो हमारा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, घर-घर में योग हो रहा था, वो दुनिया के 190 देश अब उसे फॉलो कर रही है, उसे अपना रही है। 21 जून हम कह सकते हैं कि साल का वो सबसे लंबा दिन योग का चूज किया गया जो पूरे विश्व कल्याण के लिए अहम था।
1: बिल्कुल सर, आज के युवा इतने व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, इसी से रिलेटेड एक सवाल है हम युवाओं की तरफ से आपके लिए कि आज की जो व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली है उसमें योग की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं?
0: इसमें सुखमणि मैं कहूँगा, जब मैं छोटा था तो ये शब्द था ही नहीं कि तनाव। उस वक्त हम कहते थे कि हम थक गए, अब हम कहते हैं हमें टेंशन हो गया। फर्क देखिए, काम ऐसा नहीं है कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, काम उतना ही है। मुझे लगता है हमारा मन कमज़ोर हो गया, और योग वही चीज़ है जो थके हुए शरीर को आराम से, परेशान मन को सुकून देता है।
1: बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है या जो गैजेट्स बढ़ गए हैं वो भी एक बढ़ते तनाव का कारण है, तो उन्हें हम योग से कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं?
0: बिल्कुल, अभी अगर हम कहें तो युवा, मुझे ऐसा लगता है, दो ही चीज़ों में उलझा है, पहला है गैजेट्स और दूसरा है टेंशन। ऐसा नहीं है कि हम गैजेट्स को हटा सकते हैं, आज की जीवन शैली के अंदर डेफिनेटली वो हमारे करियर ग्रोथ में, हमारी लाइफ के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट फिर भी रात तक जब आप फ़ोन देखते हैं, आप फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो सुबह नींद पूरी नहीं हो पाती, फिर दिन भर दिमाग भारी रहता है। तो मुझे लगता है अगर रोज़ मात्र 15 मिनट योग कर लिया जाए तो नींद सही तो दिमाग तेज़ और दिमाग चेंज, तो एक लाइफ में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं कहूँ सीधी बात, जो योग करता है वही आगे निकलता है।
1: बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है हम युवाओं के लिए। अच्छा सर, आपने बताया कि जैसे आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहता है ना, तो विद्यार्थियों के लिए कौन से योगासन या कौन से प्राणायाम सबसे अधिक उपयोगी माने जाते हैं और ऐसा क्यों?
0: डेफिनेटली सारे प्राणायाम, सारे आसन अपना एक अलग महत्व रखते हैं, बट फिर भी समय की सीमा है, इसलिए मैं कहूँगा अगर विद्यार्थी 3 चीज़ें जीवन में अपना ले, अनुलोम विलोम जैसे दिमाग की सफाई, भ्रामरी जैसे अंदर का शोर बंद, और सूर्य नमस्कार पूरा शरीर चालू। और सबसे अच्छी बात है, इसकी ना कोई फीस है, ना कोई मशीन चाहिए, ना कोई बिजली, बस आपको जगह चाहिए, और मुझे लगता है वो हम सबके पास बहुत अवेलेबल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत से लोग ये सोचकर भी योगा शुरू नहीं करते हैं कि इसके लिए बहुत समय चाहिए या किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: मुझे लगता है ऐसा नहीं है, योग आप कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप दिन में मात्र 15 मिनट, और आपको एक कोई स्थान ऐसा मिल जाए जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है। हाँ, अगर आप किसी सीवियर मेडिकल कंडीशन से ग्रसित हैं तो डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है। अदरवाइज हम युवाओं की बात करें, जो मेडिकली फिट है, मेडिकली नॉर्मल है, वो कभी भी अगर अपने जीवन में आज से, बल्कि अभी से अगर 15 मिनट का कमिटमेंट भी ले, तो धीरे धीरे ये यात्रा अपने आप ही बहुत ही सुखद होती जाती है।
1: बिल्कुल सर। सर, एक बहुत चर्चित सवाल होता है युवाओं के बीच में योगा से रिलेटेड, वो ये है कि क्या ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही

0: सीमित है या मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी ये किसी भी तरीके से प्रभावित करता है?
1: डेफिनेटली मेरी भी जर्नी थी, जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो मुझे भी यही लगता था कि जो मेरी मेडिकल कंडीशंस हैं उनमें मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इस विषय के अंदर आता गया, जैसे जैसे मैं यहाँ पे समय व्यतीत करता गया, मुझे समझ आया कि योग बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। हम कह सकते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो उसका पाथ योग है। डेफिनेटली एक हेल्दी बॉडी के बिना, एक स्वस्थ शरीर के बिना हम स्पिरिचुअल सक्सेस या स्पिरिचुअल जर्नी का आनंद नहीं ले सकते, तो इसलिए हेल्दी बॉडी मस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि योग केवल और केवल शारीरिक रूप पे ही हमें बेनिफिट देता है। हम कह सकते हैं पहले शारीरिक, फिर मानसिक और आध्यात्मिक, ये जीवन की वो ऊंचाइयां प्राप्त करने में हमारी मदद करता है या हमें वो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है जो शायद किसी और मार्ग से हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती।
0: ये बहुत ही अच्छी बात बताई है सर आपने हमें। मेरा एक सवाल और है हम युवाओं की तरफ से कि जो बिजी लाइफस्टाइल है जिसमें हम हमारे आहार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो योग के साथ संतुलित आहार और साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली कितना महत्व रखती है?
1: डेफिनेटली हमारे राजस्थान की अगर बात करें, हमारे राजस्थान का खाना दाल रोटी और जो छाछ है, मुझे नहीं लगता वो किसी डाइट प्लान से कम है। लेकिन अगर हम उसे सही समय पे खाएं, समय पे सोएं और थोड़ा सा योग करें, तो हम बहुत बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि शहर वाले जीवन या शहर वाली जो एक आप कह सकते हो जीवन शैली है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा हम फिट रह सकते हैं, हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डाइट प्लान्स की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली जो हमारा देसी खाना है उसी को अगर हम अपनाएं तो उसके बहुत बहुत योग के साथ अच्छे प्रभाव हमारे शरीर पे पाए जाएंगे।
0: सर एक सवाल हमारे उन श्रोताओं के लिए जो पहली बार योग शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: मेरी एक ही सलाह है, कल से नहीं आज से ही शुरू करें। आप परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, बस आप शुरुआत करें, आप एक्सपर्ट ना बने, रोजाना करें। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि अगर आप इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकमात्र की है। जरूर स्टार्ट करें, थोड़ा स्टार्ट करें, धीरे धीरे अपना आप आपकी जर्नी में चीज़ें बढ़ती जाएंगी।
0: सर मेरा एक और सवाल विशेषकर युवाओं के लिए कि अगर हमारा कोई साथी इस फील्ड में अपना करियर बनाना अगर चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह आप दे सकते हैं?
1: बहुत ही बेहतरीन सवाल है मुझे लगता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अभी जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा स्किल्स के ऊपर ओरिएंटेड है। अगर कोई भी ऐसा हुनर जो आप अपने जीवन के अंदर करियर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत सारे हमारे एकेडमिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी अगर एक अप्रोच बताऊं कि जो स्टूडेंट को शायद आकर्षित करे, योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, योग एक ऐसी दिशा है जिसके अंदर कोई भी बालक या बालिका अगर अपना समय व्यतीत करे तो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री के बिहाफ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए हम विभिन्न देशों में एज अ एम्बेसडर जा सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए मेहनत करनी होती है, उसके लिए हमें लायक बनना होता है, लेकिन इतनी संभावनाएं हैं। जिस एम्बेसी में जाने के लिए शायद बहुत बहुत साल तक आपको किसी फील्ड में काम करना होता है, अगर कोई 5 से 7 साल अच्छे से काम करे तो बहुत आसानी से वहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है। अगर मैं ज़मीनी स्तर पर बात करूँ तो शुरुआत में कोई भी स्ट्रीम का बच्चा योग में डिप्लोमा करके बाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन यहाँ तक कि योगा प्रशिक्षक आपके कॉलेज लेक्चरर लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी गवर्नमेंट आजकल विज्ञप्ति निकालती है या हम कहें गवर्नमेंट आजकल हायर कर रही है। तो डेफिनेटली करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसा मिथ होता है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं शरीर मन मस्तिष्क से रिलेटेड है तो क्या साइंस से रिलेटेड ही लोग होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट अगर आप साइंस बायो बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, आपके पास शायद थेरेपेटिक योगा के ऑप्शंस ज़्यादा निकल के आते हैं। नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास करियर ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है हम छोटे से शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी योगा ट्रेनर्स की, योगा स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं कोच की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
0: बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसा करियर चूज़ किया जाए जिसमें आपका जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहे और साथ साथ वो आपका एक करियर ऑप्शन भी बन जाए लाइफस्टाइल के लिए, तो उससे बेहतर और कोई चीज़ हो भी नहीं सकती है। तो

0: हमारे युवा साथियों को इस करियर ऑप्शन के बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे प्रचलित सवाल जो पूछा जाता है कि क्या योगा से मोटापा कम किया जा सकता है सर?
1: मैं वापस यहाँ पे यही कहूँगा, जो अगर हम योग को पढ़ें, इस दिशा में जाएं, तो योग का उद्देश्य स्पिरिचुअल जर्नी में चलना है, और विदाउट अ हेल्दी बॉडी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चल नहीं सकते। तो डेफिनेटली हमारे शारीरिक जितने विकार हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है या कोई दूसरे प्रकार के विकार है, योग से वो दूर किए जा सकते हैं। अब रही बात मोटापा, क्योंकि डेफिनेटली जब हम योग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ बन चुके हैं कि योग से मोटापा कम हो जाता है। नो डाउट, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उससे मोटापा कम नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा उससे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बॉडी का। मोटापा ही क्यों, हमारी ब्रीदिंग रेट हम कह सकते हैं, हमारी स्टेमिना, हमारा थॉट प्रोसेस, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप, क्योंकि मोटापे की ही बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो बड़ा एक सरल सा अभ्यास है अगर कर पाए तो। हमें क्या करना है, बहुत ही हौले से धीरे से ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना सीखना है। अगर आप गौर से देखेंगे ना सुखमणि, तो एक छोटा बच्चा सांस कैसे लेता है, जब वो इनहेल करता है तो उसका पेट पूरा का पूरा फूलता है, हालांकि सांस हमेशा लंग्स में ही हमारे एयर फ्लो जाता है, और जब वो ब्रीद आउट करता है, जब वो एक्सहेल करता है, तो उसका पेट पूरा का पूरा स्क्वीज हो जाता है, पूरा वो अंदर की तरह सिकुड़ जाता है। तो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए या बहुत बड़े बड़े आसन करने चाहिए। आप सिर्फ अपना आसन रेगुलर लगाएं और शांत मन के साथ अनुलोम विलोम या किसी भी तरीके की ब्रीदिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप और आसन जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा शरीर, मुझे लगता है एक स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर को आप प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब आने वाला है, तो हमारे श्रोताओं, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
1: मैं सुखमणि इतना ही कहना चाहूँगा, जिंदगी बदलनी है तो आदत बदलो, और आदत बदलनी है तो सुबह बदलो। सुबह 15 मिनट योग कर ले, पूरा दिन आपका हो जाएगा। मोबाइल डेफिनेटली आपको एंटरटेनमेंट देगा, लेकिन योग आपको पहचान देगा। योग करो, मजबूत बनो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।
0: सर, आज आपने योग के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें विश्वास है कि आपकी बातें श्रोताओं को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। कार्यक्रम में शामिल होने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: थैंक यू सुखमणि, आपका और बीकानेर आकाशवाणी का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। योग करें, स्वस्थ रहें।
2: तो भी आपने सुनी ये भेंट वार्ता जो कि मुदित कोठारी जी और सुखमणि कौर के बीच में थी। साथियों, इन्होंने बहुत खूब बताया कि यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो आदत बदले, आदत बदलनी है तो सुबह बदले। बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि योग हमारे लिए आवश्यक होते हैं। अब हम चलते हैं गीत की ओर। लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है मानसिक अभ्यास भी।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज हम आपसे दो सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में बताए जाएंगे। आज का पहला सवाल है कि कौन सा शहर जून 2026 में 26वीं सीनियर फेसिंग एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जो पहली बार भारत में इस महाद्वीपीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन है।
2: और इसी अभ्यास में आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है, हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस वित्तीय वर्ष को नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है? साथियों, इनके जवाब आप सोचिए, कार्यक्रम के अंत में मिलान करेंगे।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुखमणि, हमने बात की योग के बारे में, तुमने भी बहुत बात की। तुम तो अक्सर योग के लिए सूर्य नमस्कार वगैरह आसन करती हो, वैसा तुमने बताया, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है?
4: देखो अक्षय, योग के लाभों की अगर बात करें ना तो सूची बहुत लंबी है। ये शरीर को स्वस्थ रखता है, मानसिक तनाव कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है, साथ ही साथ जीवन में अनुशासन भी सिखाता है।
3: यही है कि यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने आप के लिए निकाले, अपने शरीर के लिए निकाले, तो हम भीतर से भी अपने आप को शक्तिमान कर सकते हैं। कई शोधों में भी यह पाया गया है कि नियमित योग से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और एकाग्रता भी बहुत हद तक बढ़ जाती है।
4: बिल्कुल अक्षय, यानी योग जो है वो केवल रोगों से बचने का माध्यम नहीं है बल्कि एक बेहतर जीवन जीने की कला है।
3: अक्सर मैं योग के नाम पे रनिंग को बहुत प्रेफर करता हूँ, और रनिंग के अंदर अगर मैं कहूँ कि हमें एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की, बहुत ज़्यादा बीट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुद को भगाना, खुद को दौड़ाना, सांसों का जो काम होता है उसके लिए अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि एक बूस्ट अप सॉन्ग होना चाहिए, और मेरे लिए वो बूस्ट अप सॉन्ग ये है।

ಸಮರಗಾದ ಸಂಜೆಯ ಸರ್ವಗ.

0: तो दोस्तों अब समय है आपके क्विज के सवालों के जवाब जानने का। आज का पहला सवाल था कि कौन सा शहर जून 2026 में 26वीं सीनियर फेंसिंग एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जो पहली बार भारत में इस महाद्वीपीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन है। इसका जवाब है नई दिल्ली।
1: और साथ ही आपको जो दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस वित्तीय वर्ष को नया वर्ष निर्धारित किया गया था, उसका सही जवाब है 2022-23। तो उम्मीद करते हैं कि आपके भी मसल्स दिमाग के सटीक आंसर की तरफ ही बढ़े होंगे और फिर मिलेंगे हम नए जोश, नए उमंग और नई तरंग के साथ। तब तक मैं अक्षय

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत कर रहे थे सुखमनी कौर और अक्षय आचार्य। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 5:55 होते हैं। आज सुनते हैं अभी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, संध्या की ये सभा सुहानी आपके लिए कई सारे कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम आकाशवाणी बीकानेर के ढुलामारो चैनल से। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा मधुर सुरों से सजी हुई फिल्म संगीत की महफिल का, जिसमें आप सुनेंगे शीर्षक गीत। 6:30 पर हम रुक करेंगे जयपुर केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, और उसके पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में अपनी मायण भाषा में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम होगा गीत गूंजे गांव गुआर। फरमाइशी पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों के इस खंड में आपके साथ होंगे रामस्वरूप बिश्नोई और डॉक्टर नमामि शंकराचार्य। श्रोताओं, इसके पश्चात 7:45 पर हम आपके लेकर जाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का साप्ताहिक लेखा जोगा बीकानेर दर्पण का 149वां अंक। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की है और इसे स्वर दिया है श्री महेश उपाध्याय ने, संयोजन श्री अमित सिंह का है। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 8:45 पर समय रहेगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का, और उसके पश्चात रात्रि 9 बजे News@9। रात्रि 9:15 पर पुनः सजाएंगे हमारी सुरों की सजी हुई फिल्मी संगीत की महफिल को। रात्रि 9:30 पर होगा कार्यक्रम चित्र भारती। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के पश्चात आज की सभा का समापन होगा। आशा है सुरों और सूचनाओं का यह सफर आपकी शाम को यादगार बनाएगा। तब तक शब्दों की मर्यादा और सुरों के माधुर्य के साथ हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। आशा है आज का यह प्रसारण आपकी स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ेगा। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढुलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर, 12 साल में 4 करोड़ से

0: It happens only in India. And we all love our India. भारत वर्ष है ही ऐसा जिसपे कुर्बान हो जाए हम सब. शेष गीत इंडिया पे था. यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है. मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर. संध्या के 6:30 होने वाले हैं. अब से गुजर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार हिंदी में.
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की. देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय

0: पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी, वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
0: पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
2: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहने, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
3: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और

0: सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित जेईसीसी में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई एसआईआर प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में बीएलओ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर बीएलओ और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनज़र टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें राजधानी जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि पीएम ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।

0: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही SMS स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलूम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख लक्ष्मीचंद नागर ने तैयार किया है। वराहा नगरी के नाम से प्रसिद्ध और राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित 12 जिले में कल 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कल मनाया जाएगा। इन्हें लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 3, अंता में 2 और अटरू में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवरलाल जनागल को नोडल अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ कमल कुमार जांगिड़ को पुलिस नोडल अधिकारी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं। सभी ब्लॉक्स में सामूहिक योगाभ्यास होंगे, इसे लेकर जिला कलेक्टर ने बीते दिनों बैठक की। इस अवसर पर योग दिवस के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में योग स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, छाया और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अंता तहसील की ठीकरिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, मंगला पशु बीमा पॉलिसियां सौंपी गई तथा विभिन्न प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आगामी मॉनसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गंगा दशमी के अवसर पर मनिहारा तालाब पर हुआ। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना रहा। इसके तहत जल स्रोतों की

0: सफाई पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू की गई। इससे पहले श्रीराम स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव हरि मोहन मीणा ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों की रक्षा करने, भूजल स्तर बढ़ाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन हुआ। वहीं इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे गए और पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मिलकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्रेटर और सोरसन क्षेत्र के अमलसरा स्थित टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक विकसित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इन सब गतिविधियों के बीच जिले में मौसम का भी मिला जुला रूप देखने को मिला। कहीं तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं आंधी और तूफान ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। 12 जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देशवी चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओ जुली जावेला। देश भर में आज पुख्ता इंतजाम परख करीची। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए फैला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा बैंक खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त रा तौर 18,880 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी। पश्चिम बंगाल रा तारकेश्वर माए राखी जिया कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री आ रकम भेजी। ई मौके व किसाना रा भला रो सरकार रो संकल्प दोहरायो।
2: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत रकम जारी करण रो राज्य स्तर रो कार्यक्रम पाली जिला रा सुमेरपुर में राखी चियो। पीएम किसान उत्सव रे जरिए प्रदेश रा 66,000 बत्ता किसाना रा खाता माए रकम भेजी जी। पात्र जनता रा बैंक खाता माए रकम भेजण री दुनिया री मोटी योजनावां माए शामिल पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत हाल ताई किसाना रा खाता माए 4,28,000 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत पात्र किसाना ने हर साल 6,000 रुपया री मदद दी जावे है। राज्य स्तर रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शामिल फिया। इनु पहले मुख्यमंत्री पाली जिला रा नेत्रा माई लगाई चिया ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਿਕਹਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਾਵਾਂ ਹਲਕਾਂ ਮਾਏ ਵਿਕਾਸ ਸਰ

0: लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा जनताओं ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों रो बत्तों बत्तों फायदो लेवन री अरज कीनी।
1: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: मुख्यमंत्री नैरी नैरी स्टॉल्स माथे सरकारी योजनावां रो फायदो लेवन वाला सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल कोलकाता माए नौ सेना सारू देश माए बनाई जा तीन जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय ने पानी माए उतारण रो कार्यक्रम है। आने समुद्री हिफाजत सर्वे और पनडुब्बियां रे खिलाफ न्यारा न्यारा अभियान माए काम लिया जावेला। नौसेना रे मुजब ए जंगी जहाज बनावन रा काम माए 232 MSME इकाई योगदान दीनो। केंद्र सरकार 16 भांतरी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाइयां बनावन और बेचण माथे तुरंत रोक लगाती नी है। सुप्रीम कोर्ट रा हुक्म पाछे जानकारां री समिति कान्यू करी जी सिफारिशों ओ फैसलो करी चियो। समिति रे मुजब आ दवाइयां स्वास्थ्य संबंधी जोखिम वेवन री शंका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यां रा औषधि नियामकां और संबंधित एजेंसियां ने करडायूं रोक लगावन रा हुक्म दीना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि भारत री साफ गोई सागर निपक्ष चुनाव प्रक्रिया मत है, देश रा हर रहवासी ने नाज है। वे आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कहो कि देश रा भरोसेमंद चुनाव प्रबंधन ने दुनियाई मान्यो है।
2: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने BLOs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत SIR में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। NEET UG 2026 परीक्षा काल ओजू हैला। इन ठीक तरीकों और साफ कोई सागा करावन सारू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज तैयारियां री परख कीनी। इनमाए 2.5 लाख बत्ता सुरक्षा कर्मचारी शामिल फिया। NTA रे मुजब NEET UG री परीक्षा देश रा 551 शहरा और प्रदेश माए 14 ठौड़ा ओजू ली जावेला, जिनमाए 22,79,000 बत्ता विद्यार्थी शामिल फैला। परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे 22 जून ताई रोक रहवेला। ओजू ली जा रही NEET UG परीक्षा सारू प्रदेश माए 25 जिला माए 577 सेंटर बनाई चिया है। राज्य माए करीब 2,09,000 उम्मीदवार आ परीक्षा देवेला। परीक्षा साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस प्रशासन SOG और IB पूरी तरह सावचेत है और CRPF री ओरों हिफाजत रा पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। प्रदेश माए साफ सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन सारू पहली दफा बिजली चालन वाली बसा चलाई जावेला। प्रधानमंत्री ई बस सेवा रा तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर 47 ई बसा ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। अमर जवान ज्योति माथे राखी जिया ई कार्यक्रम माए 29 बसा राजधानी जयपुर और 18 बसा भीलवाड़ा ने दीरी जी। ई मौके मुख्यमंत्री कहो के ई बसाओं हवा माए गंदगी कम घुड़ेला। श्री शर्मा ई बस माए अमर जवान ज्योति स्टेट हैंगर ताई सफरी कीनो।

0: ध्यानयोग है कि पीएम ई बस योजना रा तहत प्रदेश ने 1150 बसा दी जावेला। योजना रा पहला दौर में प्रदेश रा 8 जिला में 675 ई बसा चलाई जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल बीकानेर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वे लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना करेला। ई गाड़ियों गुजरात और राजस्थान में सैर सपाटा री खास खास ठोणा सीधो संपर्क फै सकेला। ई पाछे केंद्रीय मंत्री जयपुर पूगर खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने रवाना करेला। श्री वैष्णव रो खातीपुरा स्टेशन माथे मेगा कोचिंग टर्मिनल रो उद्घाटन करन रो ई कार्यक्रम है। वे 41 नाना और मझोला स्टेशना माथे प्लेटफॉर्म ने मोटा बनावन रा काम और 16 स्टेशना माथे एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली जनता ने सौंपेला। मानव प्रदेश रा न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन माथे मुसाफिरा सारू विकसित करी जा सुबिता जनता ने सौंपण रो ई कार्यक्रम है। 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। इनरो ई साल रो मुद्दो स्वस्थ आयु के लिए योग राखी जियो है। भारत सागे आखी दुनिया माए योग दिवस मनावण रे दौरान प्रदेश माए भारत रा 232 दूतावासा माए योग सत्र राख्या जावेला। राष्ट्रीय स्तर रो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता माए राख्यो जावेला। ई बीचे आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कहो के सरकार काम रे थोड़ा माथा योग करण बाबत थोड़ी देर री छुट्टी सारू वाई ब्रेक ऐप ही शुरू कीनो है। आयुष मंत्रालय री ओर विकसित करी जाई मोबाइल एप्लीकेशन काम बीचे 5 मिनट री छुट्टी लेर योग कर लोग खुद ने तरोताजा और तनाव मुक्त रख सके है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: प्रदेश में आए सगला जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्कूल कॉलेज और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग कार्यक्रम रखा जावेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो सिरोही जिला रा अबू राज माए राख्यो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रोई इन माए शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम माए राख्या जावन वाला योग दिवस कार्यक्रम माए शामिल भेला। आयुष मंत्रालय री ओर राजधानी जयपुर रा जंतर मंतर माए भेड़ो योगाभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। ईसा गई SMS स्टेडियम अल्बर्ट हॉल और जल महल समेत शहर री खास खास ठोणा योगाभ्यास कार्यक्रम राख्या जावेला। ई बीचे नई दिल्ली शुरू करी जा 100 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम रा तहत आखर राज्य माए योग जागरूकता कार्यक्रम राख्या जा रहा है। आज डीगर जैसलमेर माए योग जागरूकता रैली निकाल और निरोगा रेवन रो संदेश दियो चियो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश री चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए BLO संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट UG 2026 परीक्षा काल ओजू ली जावेला। देश भर माए आज पुख्ता इंतजाम री परख करी ची। हर 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए फैला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 MHz पर आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। संध्या के 7 बजते हैं। सभी श्रोताओं को अब बेसब्री से इंतजार होगा कार्यक्रम गीत गूंजे गांव गुवाड़ का, जिसे आप सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत के तहत। आज लोक संस्कृति की यथाति लेकर के आए हैं और लोक संगीतों के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और रामस्वरूप बिश्नोई। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: किसान भाई राम राम। देखो गणहरक कोड मान मनवार हागे और संस्कृति री फूटरी ओळखाण सारू चौमासेरी चाव में और एण गीतड़लारी ठाव में आज कार्यक्रम रे छेकड़ले तोर तई आप री दायरा गीतड़ा लेर हाजिरो सा हूँ रामस्वरूप बिश्नोई और मारे सागे मारो एतालु हाथी।
1: नमामि शंकर आचार्य।
0: नमाम भाई आप जद भी यहाँ बाजे माथे आओ तो बड़ा कोडू आओ हरखू आओ और यहाँ लागे कि थामे जो को चाव और कार्यक्रम रे प्रति ठा है नी भी हूँ सुन नाला तो मन लागे कि कन्ने बैठा है बाजे लेर कहा कि ये मोबाइल माते हूँ आजकल आप एफएम माते भी सुना सका। हाँ तो घनी दूर जाने की जरूरत खोनी एफएम तो थे चलाओ ही हो और अपनो मीडियम वेव माथे भी और शॉर्ट वेव माथे भी कार्यक्रम सुन रही जकी उतावलो पड़ो है बहुत थानी बात ने हम जो आज आप रखने के रंग बिरंगा कागजिया भी है ईमेल आलो ठिकानों भी लिखोड़ो पड़ियो है पानड़ी माथे और कुण कुण ने दाय करिया है तो पड़िया है। मन यह लगे कि पहली तो आ हगलारी दाय माथे गीतड़लो होना था पछा नाम बोला
1: गीतड़लो तो पछे सुनावा पर अच्छा। पर मैं तो एक बात जानो चाहूं कि आज को मौसम बदल रही है रंग बिरंगो मौसम बदल रही है और पहले तो तावड़ो पड़े कहीं बदली आवे आपा कई बार सुना भी हाँ कई बार दुहा भी बोलिया के चर चर कति चिड़क लिया करे रीत स्नान तंबू सब तानियो बादल या आसमान। तो सा देखो कार्यक्रम ले आया हाँ गुंजे गांव गुवाड़ चूंकि शनिवार है और शनिवार है तो आप रे दाय आवे जी को कार्यक्रम है क्योंकि दाय यूं आवे क्योंकि आप रे जो का कागज है बे मारे तक पुगिया है और सागे सागे मेल भी तो कई भाई टाबरिया है जिका मेल और करन लाग गया है और
0: थाने तो कोड है मेल और आवे जनेर सुनन नालन मेल और थर कागदियां कोई कोड को नहीं मान तो
1: हूं तो
0: नहीं नहीं एक बड़ा बात
1: हाँ, बताओ ने
0: माने तो नाम है मारे तो नाम बोल दिया कई श्रोता तो इतना फूट रहा सियाणा है कि कोई भी गीत सुना दिया पर मारो नाम बोल दिया
1: जरूर जरूर।
0: देखो अब आ रे नाम वाली बात तो पछे करा पहली तो हां तो लो बाजे माथे सुनो सा फूट रो सो राजस्थानी लोकगीत।

वासा बाराप पुनाराम और तुलसा राम रो गौड़ो ओ समूह स्वर में जो कहने क्यों हाथीड़ा मिलन होनायो। और देखो कोड भी है नमन भाई, गाजे नहीं तो जेठ में नहीं आज न कज गाज ही। और बिया तो अभी जेठ दूजुड़ो है जो कहना आप अधिमास के वहाँ पुरुषोत्तम मास के वहाँ कई कहते रूंटो, अब अलग अलग नाम है जहाँ भी जानो आप अधिमास है। और इन रमायने गाजनेरी और बाजनेरी बात होनी चाहिए जर इन गीत ने दाय करो हो सा अपना हाथरा रोजाना खागे दी और ठिकाना लेखन भेजे फूटरा फूटरी राइटिंग में। कमला खलोनी बीकानेर सु सुभाष खत्री, तरुण खत्री, वर्षा खत्री, जोय खत्री और ऐसा मोमा शरबास श्री

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: देखो सा, मैं आपरे सामने अगलो गीत निजर करो, पर उनसे पहला जिको गीत री जिकी दाई करी है गीत रे वास्ते, वा नाम मैं बता दे हूँ। जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर सु डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही, राजश्री गौरव शाही। इन अलावा आप कागद आए है कॉलेज सु फूसराज सोनी, सूरज प्रकाश सोनी, धर्मेंद्र लालचंद सोनी। और इन अलावा परमिला गंज आलोट, जिला रतलाम मध्य प्रदेश को कागद आए है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा।
3: तो साथे सुन रहा हो कार्यक्रम गुंजे गांव गुवाड़, जकेर मायने आप फरमाइशी पत्र माथे और ईमेल माथे आधारित लोक गीत सुने करो, लोक भजन सुने करो। और इन खातर कागद आयो है सा रिंगनी छत्तीसगढ़ सु दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। यह है अपना नियमित श्रोता संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र, रविंद्र, सनी, मुन्ना, बड़ू दादा, बहादुरपुर रथ चौक, जिला जलगांव महाराष्ट्र सु, पटेल नगर मलोट सु भी कागज लिखो है सा डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया।
2: और साहब आप फरमाइश माथे गीतर लो निजर करूँ सा, सुनो साओ मीठो सो गीत सीमा में सार गाइडो दल बहादड़ी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

है और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: देखो नमामी भाई, गीतड़ला तो तैयार पड़े है बाजन वास्ते, बाजे माथे, पण ए जका सुनना चावे नी आप दाय बेके उडीके की मारो नाम कने बोली जी
1: एकदम एकदम बोलो सा।
0: पसंद तो फूटरी है पण इन सारू कागद लिखन भेजो ऐसा। महेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र सु भाई अभिजीत गोयणकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांक्ष, बादलापुर मुंबई सु सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, आकार हाइट्स एखाई लिखो ऐसा, वैशाली, शैलेश, सुमित और ऐसा केनेरा मोहल्ला पटियाला सु बत्रा परिवार, मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका, वंशु बत्रा।
1: और सर हमारे खाने भी एक कागज आया है और कागज है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार सोसा, ताज मोहम्मद असारी।

गुलाम साबिर राही मेहराज जहां और इन अलावा छत्तीसगढ़ बाटापरा दंतरेगी सुमाये है द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर वर्मा दीपक कुमार वर्मा जाविंद्र कुमार वर्मा और एक और है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ सु टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा और आप सब री फरमाई से है गीतर लेरी और गीतर लो भी देखो लेर आया हाँ पुष्पा सैनी रो गाइडो क्योंकि आपने मालूम है ऐसा कि अब बिरखा रो मौसम हो रही है बिरखा रे मौसम रे मायने छपरा है बे क्या है कई बार तिड़कन लाग जावे तो घर में बैठी पंडितन है बा आप रे जिको भरतार है बिने हिलो मारे बाने बुलावे इन बहाने के कोई न कोई तरीके सुबह घरे आ जावे और बा क्या कह रही है कि छपर पुराना पिया हो गया रे तिड़कन लाग गया बास मेरी पीठ देखो सा गीत ले रे मायने और सुना सा वो गीत।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वनुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
2: तो सा अब आप इन संदेश से सुपला गीत लो सुनियो छप्पर पुराना पिया पुष्पा सेनर गाइडो और अगले गीत वास्ते फरमाइश करी है कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर सो नाना डोंगर दिवे रमाताई डोंगर दिवे सीमाताई डोंगर दिवे रीमाताई डोंगर दिवे दीक्षाताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे। इन अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब सो कागद आया है हरदेव मिका बलविंदर बिरक जैतेक बिरक मिका बिरक और सागे सागे छत्तीसगढ़ रिंगनी सो कागद आया है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा रो और आप भी इच्छा है कि एक बढ़िया सो गीतर लो सुनाया जावे पण सागे सागे कागद मारे भाई रामसुख खने भी है
3: एबी देखो संदेश भेजा करे कागज लिखन भेजे संदेश आयो है सा सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान बठिंडा रोड डब्बाली सु राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग और यह है सा अपना नियमित श्रोता जका अमरगढ़ तहसील सादुल शहर सु बलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान हरविंद्र मान राजा सिंह मान कुलविंद्र कौर मान के एस मान आ सगला रिदाय मत है सुना सा वीरेंद्र शर्मा गौड़ो और लोकगीत।

0: गिरी स्वामी।
1: तो नमामि भाई, कार्यक्रम गुंजे गांव ग्वाडर, वक्त तो इया सरकतो गयो, थाई कौन पड़ियो, कई गीतड़ला रह गया, कहरा नाम बांच को नहीं पाया, पर आगे दाय में जरूर बांचा ला।
2: आ कसर आगे निकाल सा अपन अगले कार्यक्रम में,
1: पर अब घड़ी इशारो करे।
2: हां, सीख अपन लेवणी चीजे, और आपनो अपने हितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य,
1: रामस्वरूप बिस्नोई ने सीख दे रहो सा, मोखला मोखला,
2: राम राम, राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत, इसमें आज आपने सुना गूंजे गांव ग्वार, जिसमें आप सुनते हैं फरमाइशी लोकगीतों का प्रोग्राम, जिसमें आप खुद खत लिखते हैं, ईमेल के द्वारा अपनी फरमाइशें बतलाते हैं और हमारे साथी आपके लिए ख़ास ये लोकगीतों का चुनाव करके लाते हैं और आपके लिए बजाते हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार 7 बजकर प्रारंभ होता है और 7 बजकर 45 मिनट तक आप इसे सुनते हैं, तो सुनते रहिएगा आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है, रात्रि के 7 बजकर 46 मिनट और 23 सेकेंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

इस सुगम संगीत के गीत के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है बीकानेर की धड़कनों को शब्दों में पिरोता यहां की कला साहित्य और संस्कृति का अनूठा दस्तावेज बीकानेर दर्पण। इतिहास के झरोखों से झांकती है वेली हूं या फिर आधुनिक साहित्य की नई इबारत, हमारा यह शहर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। आज के इस 149वें अंक में हम रूबरू होंगे यहाँ की सांस्कृतिक फिजाओं में घुली हुई नई हलचलों से। बीकानेर की साहित्यिक विरासत को सहेजने के इस प्रयास में आइए जुड़ते हैं आज की विशेष कड़ी से। इसकी प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की। इसे स्वर दिया है श्री महेश उपाध्याय ने और संयोजन अमित सिंह का है। तो आइए सुनते हैं बीकानेर की इस रस्म यात्रा का ये दस्तावेज।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेश उपाध्याय का नमस्कार। बीकानेर दर्पण के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस अंक के पहले पायदान पर हम आपको लिए चलते हैं स्टेशन रोड स्थित महाराजा नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम। दिनांक 16 जून को सुश्री सरोज भटनागर स्मृति संस्थान बीकानेर द्वारा प्रख्यात उद्घोषिका और आकाशवाणी की पूर्व कार्यक्रम अधिशाषी सुश्री सरोज भटनागर की 77वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पहला सुश्री सरोज भटनागर स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधिपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। श्रोताओं, सुश्री सरोज भटनागर स्मृति सम्मान का यह पहला आयोजन था। इस सम्मान से नवाजा गया। आप थे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रभा भार्गव, वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रदीप भटनागर, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर दीपाली धवन, वरिष्ठ संगीतज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा और मोहनलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। आइए सबसे पहले जानते हैं आयोजन की कल्पना और संदर्भ पर संस्थान समन्वयक नंद किशोर सोलंकी के विचार।
1: देखिए, ऐसा है, सरोज भटनागर आज इस दुनिया में नहीं, मगर उनके किए गए काम, उनका व्यवहार, उनकी आवाज़, उनकी योग्यता आज बीकानेर के जन जन में व्याप्त है। मैं समझता हूँ कि सरोज भटनागर को चाहने वाले और उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, कोई उनको बड़ी बहन मानता है, कोई उसको अपनी टीचर मानता है, और मैं तो एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते यही कहूँगा कि सरोज की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने इस संस्था का निर्माण किया, जिसमें मैं केवल अकेला नहीं हूँ। बाकी अकेला नाम तो किसी न किसी को देना ही होता है, जैसे मधु जी है, आपके हरीश बी शर्मा है, संजय पुरोहित है, बुनियाद हुसैन है, आपके कमल रंगा है, ये सब लोग हम लोग बैठ के पिछले एक साल से हम एक योजना बना रहे थे। उस योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए आज का कार्यक्रम हमने रखा, वो इसलिए कि पुण्यतिथि पर तो हम कोई कार्यक्रम करना नहीं चाहते, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम अगर सोचें और मैं सोचूं, मेरे यार दोस्त समझे, मेरे मित्र सोचें, तो 17 जनवरी हमारे लिए मनहूस दिन था कि जो उस दिन वो इस बीकानेर से ईश्वर के घर उसका जाना हो गया। मगर जन्मदिन एक ऐसा दिन है जब आदमी पैदा होता है तो खूब खुशियां मनाई जाती है, तो जब आज 16 जून को उसका जन्मदिन है तो हम सब लोगों ने ये तय किया कि जन्मदिन पर ही हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो सबकी धारणा और सबकी भावना के अनुसार हमने आज के दिन उसका जन्मदिन मनाने का और उसकी याद में इस संस्था का जो हमने निर्माण किया है उस पर कुछ बीकानेर के या बीकानेर के बाहर से जितने भी विद्वान हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, नाटककार, रंगकर्मी हैं, संगीतज्ञ हैं, इन लोगों को हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो आज के पहले कार्यक्रम में हम शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, और मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसी शख्सियत है जिसको बीकानेर नहीं, बीकानेर की बाहर की सीमाओं को सीमा में भी उनका बहुत बड़ा नाम है, वो है डॉक्टर प्रभा भार्गव। दूसरा जो व्यक्ति है जिनका हम सम्मान करना चाहते हैं, नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, वो है प्रदीप भटनागर साहब का। वो एक रंगकर्मी भी नहीं, एक फिल्मी कलाकार भी हैं और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, और बीकानेर में नाटक को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। तीसरा जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर अशोक शर्मा, जिनका परिवार पूरे संगीत को समर्पित था, और आज बीकानेर के अंदर अगर कोई संगीत के क्षेत्र में किसी संस्था को याद किया जाता है वो संगीत भारती है। जयचंद जी के पुत्र अशोक जी शर्मा बहन सरोज के साथ रहे हुए, उनके साथ HMB की रिकॉर्डिंग में भी वो साथ गए थे, तो एक उनका सम्मान है। और एक सम्मान है उनसे भी साथ रहे हुए बुजुर्ग हैं मोहनलाल जी शर्मा, वो भी HMB रिकॉर्डिंग में सरोज बहन के साथ गए हुए हैं, तो उनका भी सम्मान है। एक है शिक्षा जगत में बहुत जाना पहचाना नाम है दीपाली धवन, जिनका भी आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। तो आज हम इन पांच शख्सियत का इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में हम उनका सम्मान करेंगे। और आज के अध्यक्ष जो हैं वो मानव आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं अपने गोपाल कृष्ण जी, और हाई कोर्ट के जज भी रहे हुए हैं, वो भी सरोज बहन के साथ काफी उन्होंने काम किया है।
0: संगीत के क्षेत्र में सम्मानित हुए डॉक्टर अशोक शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा,
2: दो तीन बातें मैं आपको खास बताना चाहूँगा। एक तो हमने आचार्य तुलसी के भजनों के रिकॉर्डिंग थ्रू करी थी, तो उसके अंदर

0: एक ग्रुप था जिसमें हम 14 लोग थे, जिसमें सरोज जी भी थी, मैं भी था, तो मैंने गाना भी गाया था और उसमें अपना बजाने का काम भी किया था। एक तो ये काम किया, दूसरा मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था क्योंकि मुकुल कार्यक्रम के जितने भी प्रोग्राम होते तो इसको अलग अलग स्कूल के बच्चों को मैं तैयार करके ले जाता था। तीसरा, संगीत भारती में सरोज जी ने एडमिशन जब लिया तो वो संगीत भारती मेरे पिताजी की संस्था उसके अंदर, तो हमने दोनों ने साथ में संगीत की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है जिसको निपुण बोलते हैं एम्यूज, मास्टर ऑफ म्यूजिक, वो हमने साथ में करी और दोनों हम गोल्ड मेडलिस्ट थे उसके अंदर। ये हमारी और पारिवारिक इतना था कि आज तक जुड़े हुए हैं। ये उन 70 के दशक से लेके आज तक की घटना है कि 70 का दशक है उसके अंदर वो उनसे जुड़ा हुआ और आज 2026 आ गया जब बराबर हम उसके अंदर, मतलब वो पारिवारिक और वो सब कुछ एक दूसरे के प्रति वो प्यार मोहब्बत है।
1: उन्हीं के साथ काम किया हुआ, उन्हीं के साथ आपके अनुभव हैं और उन्हीं की स्मृति में आज आपको सम्मानित किया जा रहा है और संगीत के लिए, तो दोनों बातों को कहाँ देखते हैं आप, क्या सोचते हैं आज, क्या आपके मन में आता है?
0: उसके लिए तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो बहुत बड़ी थी, उनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने जब काम किया तो एक दूसरे को सहयोग करके इतना काम किया कि लोगों के सामने वो एक मिसाल बनाए। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपने ढंग से काम किया, मैंने उनके साथ में काम किया, कुछ आकाशवाणी के ऊपर अंदर कुछ फीचर उन्होंने दिए थे तो उनको भी मैंने तैयार किया। ये हमारा आपस का एक तालमेल था।
1: और आप हैं शिक्षाविद डॉक्टर दीपाली धवन।
2: सही में शिक्षित अब हम किसको कहेंगे कि आज के ज़माने में जैसे हम बात करें कि यूनिवर्सिटी में हम बात करें पेपर पब्लिशिंग की, लोग कहते हैं हमने रिसर्च कर ली, हमने पेपर निकाला, लेकिन पेपर सही अर्थों में यदि हम देखें तो वास्तव में सही रिसर्च होने में कई साल लग जाते हैं। और यदि हम सोचें कि एक रिसर्च पेपर को बनने में कई साल लग जाते हैं और उसमें कई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमने एक साल में इतने पेपर निकाल दिए, तो वो मशरूम ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है ऑनेस्टी से काम होना चाहिए। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हम नंबर के पीछे नहीं भागें, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागें, क्वालिटी को मेंटेन रखें। जो कुछ भी हम करें वो एक सही तरीके से करें, जो हमको बच्चे जो हैं वो इस तरीके से याद रखें। जैसे मैं आपको कहूँ कि सरोज मैडम हैं, इन्होंने हमें हारमोनियम सिखाया था 75 में, जो मुझे आज भी याद है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, यदि आज आप मेरे सामने रख दो तो सालों बीत गए जब मैंने उस हारमोनियम को काम में नहीं लिया, लेकिन आज आप मेरे सामने उसको रख दो तो शायद मैं वो अच्छे से बजा लूँ। तो एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान है कि वो ऑनेस्टी से अपने बच्चे को पढ़ाए और जो कुछ उसने हमें ज्ञान दिया है वो हम ऑनेस्टी से लेवे।
1: आकाशवाणी को भी 90 वर्ष हो गए, 8 जून अभी गया है, तो आपकी तरफ से आकाशवाणी की कोई बात आपको?
2: हाँ, आकाशवाणी में मैं हमेशा रेगुलर विजिटर रही हूँ और आकाशवाणी जब शुरू हुई थी उस समय मैं अक्सर टॉक देने जाया करती थी और किसानों से संबंधी, महिला जगत से संबंधी ये टॉक्स मैंने बहुत दिए हैं। और जब भी मैं जाती तो राजेंद्र माथुर हुआ करते थे उस समय, तो वो मुझे कहते कि मैंने उस समय रिसर्च भी किए थे विटामिन ए से रिलेटेड गजनेर में, तो आप देखिए कि उस समय मेरी काफ़ी टॉक्स आई थी कि किस तरह से हमें यहाँ मतलब हरी साग सब्जी खानी चाहिए, यहाँ रतौंधी क्यों हो जाती है। तो मेरे सामने किताबें रखी जाती थी कि आप मैडम ये पढ़ के बताओ। फिर जब उन्होंने देखा कि पढ़ने में इतना मज़ा नहीं है जितना मैडम जो है खुद बिना पढ़े ही बता देती हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो वो अक्सर मुझे रेगुलर विजिटर के रूप में बुलाया करते थे और आकाशवाणी जाके हमें बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता था और लगता था कि हम टॉक्स दें जाएं, है ना। तो मैं रेगुलर विजिटर रही हूँ आकाशवाणी में और हमेशा मौका मिलता रहा है मुझे और मैंने किया है ये।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकाशवाणी से बात की। और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे बच्चे, उनको लगता है कि क्या हम सिर्फ किताबी ज्ञान से या आजकल जो है डिजिटल जो प्लेटफार्म है जिसमें मोबाइल की बात करते हैं, आपका अनुभव उनके लिए एक संदेश बनता है, क्या कहोगे?
2: हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग पहले आकाशवाणी से जुड़े हुए थे वही चीज़ अब वापस आने लगी है, और आए तो शायद वापस वही मज़ा हम लोगों को आएगा।

0: क्योंकि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल हमें देखने में आया है कि मोबाइल से लोग बाग 100% जुड़े हुए हैं, 99 भी नहीं कहूंगी, 100% जुड़े हुए हैं। उससे हम सब लोगों की आंखें बहुत ख़राब हो रही है। और ये जो आकाशवाणी वाला फंडा है, इसमें क्या है कि इस तरीके का कोई लॉस नहीं है, और छोटे ट्रांजिस्टर भी, अब मैं आपको बताऊँ कि आँखों के आगे घूम रहे हैं पॉकेट में डाल के, हम छोटे ट्रांजिस्टर में कई बार दिन में वो प्रोग्राम जो आते थे, सुबह जो आते थे, इवन ये आजकल जो वापस मोदी जी ने शुरू किया है वंदे मातरम, है ना, तो ये आकाशवाणी में अक्सर हम सुबह उठते ही सुना करते थे वंदे मातरम, और वो हमें तब से अब तक याद है। हाँ, ये सब चीज़ें जो है, मतलब ये वंदे मातरम वगैरह, ये हमें अब तक याद है ना, तो ये सब चीज़ें हम जो उसमें देखते थे उस ज़माने में, वो हम आज भी मतलब मिस कर रहे हैं।
1: और अब आपको लिए चलते हैं उन महान विभूतियों के पास जिनको सम्मानित किया गया। क्या कहते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी प्रदीप भटनागर?
2: मैं तो अभिनय पाठशाला का एक विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को बाकी है। ये सम्मान ईश्वर की अनुकंपा, बड़ों का आशीर्वाद, साथियों का स्नेह और छोटों का प्रेम का प्रतिफल ही है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आगे जाना है अभी तो, और सम्मान के साथ जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सरोज स्मृति संस्थान का आभारी हूँ, और स्पेशली विशेष रूप से आदरणीय आनंद किशोर जी सोलंकी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
1: श्रोताओं, बीते सप्ताह 12 जून से 14 जून तक सूचना विभाग की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अवसर था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होना। सुनिए सूचना विभाग के उपनिदेशक श्री हरिशंकर आचार्य ने क्या बताया।
3: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश भर में चाहे आधारभूत सुविधाओं का विकास हो या स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास हो, ऐसे सभी जो काम हुए हैं उन सभी को एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के दिया गया है। यह जिला प्रशासन और सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लगाई गई है। कल 12 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था और 14 तारीख तक ये चलेगी। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, देश का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास हो, और जो जो जन कल्याण के कार्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किए गए, उन सभी को इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा चेनाब रेलवे ब्रिज है उसको यहाँ दर्शाया गया है। समुद्र पर जो अटल सेतु बना है उसको दर्शाया गया है। वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेनें शुरू हुई है उनको भी दर्शाया गया है। हर घर सूर्य घर जो योजना है, इसके अलावा जैसे 81 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार निःशुल्क राशन दे रही है उसको दर्शाया गया है। इन सभी चीज़ों को हमने लगभग 70 होर्डिंग्स के माध्यम से दर्शाया है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के ही मंशा के अनुरूप जो राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश सरकार 150 यूनिट निःशुल्क बिजली हर महीने उपभोक्ताओं को दे रही है। आप देखिए, सरकारी नियुक्तियों की अगर बात करें तो 1,25,000 लोगों को अब तक, युवाओं को अब तक नियुक्तियाँ दी जा चुकी है। 1,45,000 नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं। पहली बार एक पूरे साल का कैलेंडर जारी किया गया है। इसके अलावा बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए जो 13,00,000 से अधिक साइकिलें वितरित की गई हैं, आपके 45,000 से अधिक स्कूटियां दी गई हैं, विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ है, ऐसी सभी चीज़ें इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने दर्शाने का प्रयास किया है। एक पूरा एक सरकार का जो हम इसको विजन कह सकते हैं, जो विजन रहा है 12 वर्षों में और प्रदेश सरकार का 2 वर्षों में, उन सभी को इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है।
4: एक बात यहाँ आचार्य जी, आज चूँकि दूसरा दिन है और कल जो है उद्घाटन हुआ था, कितने लोगों का यहाँ विजिट होने की संभावना आप मानते हैं? और गांव के और ढाणियों के लोग भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आते हैं और देख रहे हैं, जिससे सरकार की योजना जो है ढाणी तक पहुँच रही है, गांवों तक पहुँच रही है।
3: देखिए, कल भी बड़ी संख्या में लोग आए थे, आज भी आए हैं। हमने NSS को भी कहा है, NCC को भी कहा है, स्काउट गाइड को भी कहा है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों की हमारी बहनें हैं उनको भी कहा है। हमारा प्रयास रहेगा युवाओं को भी, क्योंकि खेलों को लेकर, युवा कल्याण को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है, तो हमने प्रत्येक वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि कल तीसरे दिन तक हम अधिक से अधिक लोगों को यह प्रदर्शनी दिखाएं, ताकि सरकार जो काम कर रही है, और सरकार की हमेशा मंशा होती है कि योजनाएं और कार्यक्रम जो लागू किए जाते हैं उनका लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, तो उस व्यक्ति तक इनकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर हम अधिक से अधिक

0: लोगों को इस प्रदर्शनी में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसको यादगार बनाने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर में 50 दिवसीय काउंटडाउन अभियान आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 18 जून को जूनागढ़ परिसर में राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय बीकानेर के विद्यार्थियों द्वारा योग एवं प्राकृतिक

0: इसी क्रम में 18 जून को जूनागढ़ परिसर में राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय बीकानेर के विद्यार्थियों द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष शेषमा के निर्देशन में योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन और अभ्यास किया गया। इस दौरान योग दिवस से जुड़े विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी तथा संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष शेषमा ने क्या कहा।
1: जैसे आज के तनावपूर्ण जीवन में योग की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि योग शरीर मन आत्मा तीनों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए योग को हम अगर दैनिक दिनचर्या में शामिल करें तो हम बहुत से रोगों से रोकथाम पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए करो योग रहो निरोग, इसके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ और स्वस्थ समाज स्वस्थ देश स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें।
0: आयुर्वेद विभाग की डॉक्टर कौशल्या सैनी ने बताया।
2: राजकीय आयुर्वेद सामान्य चिकित्सालय PBM आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूर्वाभ्यास हमारे आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया है जूनागढ़ के कैंपस में। और इस बार हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है एजिंग के ऊपर है कि जरावस्था में होने वाले विभिन्न रोगों की चिकित्सा योग द्वारा कैसे की जाए और उन रोगों को होने से कैसे रोका जाए और कैसे बचाव किया जाए, इस थीम के ऊपर हमारे छात्रों ने पूर्वाभ्यास किया है। इस योग दिवस पर आप सबसे नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे करणी सिंह स्टेडियम में जो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सभी उसमें अधिक से अधिक भाग लें और हमारे योग दिवस का लाभ प्राप्त करें। योग जो है हमारे योग का और योग की जो चिकित्सा है वो सेल टू सेल बॉडी की पहुंचती है। यानी जब हम दौड़ना जिम जाना ये अन्य एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें तो खाली हमारी मसल्स के लेवल पे ही काम होता है, लेकिन ये बॉडी की जो प्राणायाम है योगा है ध्यान है वो हमारी प्रत्येक बॉडी सेल्स तक इसका फ़ायदा पहुंचता है और ऑक्सीजन पहुंचा कर उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर उनकी एजिंग को रोका जाता है, उनके पोषण को बढ़ाया जाता है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि प्राणायाम योगा सीखने के लिए हमारी आयुष मिनिस्ट्री दिल्ली द्वारा एक प्रोग्राम है हाउ बिल्ड करके आप फॉर्म सर्च करेंगे और उसमें फ्री योगा सेशन के लिए आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक ये प्रोग्राम निःशुल्क आपके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप घर पे बैठकर भी अपना योगा अभ्यास इस पर सब्सक्राइब करके इसको डाउनलोड करके आप फ्री योगा सेशन आप हमारा आयुष मिनिस्ट्री द्वारा चलाए गए प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं और आरोग्य और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी कृपा करके अधिक से अधिक इसका आयुष मिनिस्ट्री द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन योगा सेशन का भी फ़ायदा उठाएं और हमारे महाविद्यालय में योग महाविद्यालय में गर्मियों में प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक और सर्दियों में 8 बजे से 9 बजे तक डेली योगा अभ्यास कराया जाता है। तो जो भी हमारे रोगी भाई हैं या जो अस्वस्थ भाई हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी वहाँ पर आप योगाभ्यास के लिए अवश्य पधारें और हमारे योग महाविद्यालय का फ़ायदा आप उठाएं और उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि हमारे प्रधानमंत्री के जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षणम को अधिक से अधिक उनके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और रोगियों की चिकित्सा भी योग के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा आप प्राप्त करें और स्वस्थ रहें।
0: श्रोताओं अब सुनिए आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर इरशाद रफीक क्या कहते हैं।
3: वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद विभाग बीकानेर, आज 18 जून को जूनागढ़ में योग प्राकृतिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डॉक्टर संतोष शेषमा के निर्देशन में योग पूर्व अभ्यास कराया गया और बीकानेर जिले का मुख्य आयोजन जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 तारीख को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आप सभी को मालूम

0: है कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी कि हर व्यक्ति, हर आयु के व्यक्ति के लिए योग की आज संसार में आवश्यकता है। जैसे कि हमें मालूम है गैर संचारी रोग और स्वस्थ जीवन शैली इसलिए योग की सार्थकता संसार में बढ़ी जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि जीवन में योग को अपनाएं और योग की सार्थकता जीवन में ग्रहण करें।
1: और अब सुनिए बीकानेर की राजकीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष विमल शर्मा क्या कहते हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में यहाँ आज के जो है अभ्यास हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी इससे जुड़े हुए हैं,
3: स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण है ना, वो योग के माध्यम से संभव है। यही मतलब है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग निरंतर करते रहना चाहिए, अनवरत जारी रहे ये प्रक्रिया। ऐसे प्रशिक्षण बीकानेर में विभिन्न पार्कों में एवं जो भी खेल के मैदान है, क्रीड़ा संगम है, वहाँ स्टेडियम इत्यादि में निरंतर जारी रहे।
1: और अब सुनिए वो विद्यार्थी क्या कहते हैं जिन्होंने योगाभ्यास किया।
4: मेरा नाम अभिनव ओझा है और यहाँ पधारे सभी BNYS छात्र। और हम सभी पिछले कई सालों से सिर्फ इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि बीकानेर का योग दिवस हर साल बेहतर कैसे बनाया जाए। ये सभी विद्यार्थी अपना पूरा प्रयास देते हैं, पूरा सहयोग इनका रहता है। आज भी 3 दिन जैसे बाकी हैं योग दिवस में, तो ये लोग प्रोटोकॉल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जूनागढ़ में आज ये लोग सभी आए हैं। पिछले साल इन्हीं के संयोग से हमारे डिपार्टमेंट को पुरस्कार मिला था योग दिवस के लिए, और हम आशा करते हैं कि इस बार का योग दिवस भी बहुत बेहतरीन जाए और हम एक बार फिर पुरस्कार लेकर आए।
5: मेरा शुभ नाम तरुण शार्दुल है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, आयुर्वेदिक कॉलेज योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा का विद्यार्थी हूँ। और यहाँ पर हर वर्ष की तरह हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम करते हैं। और हम है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जनता को ये समझाना चाहते हैं कि योग आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः सभी को योग करना चाहिए। योग अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही थीम है, मोदी जी की भी यही थीम थी कि योगा फॉर हेल्थी एजिंग, यानी योग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, अतः हमें 365 दिन योग करना चाहिए।
6: नाम भानु प्रताप है, मैं BNYS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम यहाँ पर जूनागढ़ के लिए आए हैं हम लोगों को यही संदेश देने के लिए कि आज योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सभी को योग करना ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जी की भी यही संदेश है जो 365 दिन योग करना चाहिए।
7: मेरा नाम अनुज बिजानिया है और मैं सीकर से हूँ, मैं BNYS फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और हमें योग प्रातःकाल करना चाहिए, इससे हमारे शरीर पर बहुत सारे फायदे होते हैं, कई विकारों रोगों को दूर करता है, अतः हमें 365 दिन तक योग का अभ्यास करना चाहिए।
8: मेरा नाम प्रियंका दादिच है और आज मैं BNYS की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज हमने यहाँ पे योगाभ्यास किया है जिसमें हमने कुछ पोजेस किए हैं, एडवांस आसन है, तो ये हमें करके बहुत अच्छा लगा।
9: मेरा नाम विकास कौशिक है और आज जूनागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी योग क्रियाएं हमने की वो आज दैनिक क्रिया के भागदौड़ भरे आजकल के खान पान को लेके, हेल्थ इश्यू को लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें, हम ऐसी अंग्रेजी दवाइयाँ वो सब खाते हैं, तो उन सब को, उनके प्रभाव को कम करने के लिए योग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। और ये जो क्रियाएं हैं जो सिर्फ एक दिन को ना लेके कि सिर्फ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज ही किया जाए, उसके अलावा अगर प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा एक घंटा किया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा हो।
10: मेरा नाम हर्ष शर्मा है, मैं BNYS थर्ड ईयर का छात्र हूँ। और जैसे कि आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रोटोकॉल प्रैक्टिस भी की और कुछ हमने आसन की प्रदर्शनी भी की। जैसे कि इस बार की थीम है हेल्दी एजिंग, तो उससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी आसन किए, जैसे कि मंडूकासन हो गया, वक्रासन हो गया, जो कि डायबिटीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उम्रदराज लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और प्रोटोकॉल के बारे में तो जैसे हम सभी जानते ही हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी उसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं। और 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस दिन 175 से भी ज़्यादा देशों के अंदर और एक साथ योगाभ्यास किया जाता है। और

0: यही हमारी भारत देश की देन है।
1: मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं BNYS थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हम जूनागढ़ में आए हैं और यहाँ पे कुछ एडवांस आसन कराए जा रहे हैं और 3 डेज बचे हैं इंटरनेशनल योगा डे को लेके। 21 जून के लिए तैयारी की जा रही है, 50 डेज का काउंटडाउन चल रहा है, उसी के ही उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और अपनी लाइफस्टाइल में एज अ पार्ट योगा को डालें और एक नई हैबिट बनाएं।
2: ये था आज का बीकानेर दर्पण। श्रोताओं, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारा आग्रह है कि सिर्फ कल के दिन योग न करें बल्कि योग को दैनिक कार्यों में शामिल करें ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेवंतराम लेघा की और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोताओं रात्रि के 8:30 होने को हैं। यह समय है कार्यक्रम लोक संगीत का, तो लीजिए प्रस्तुत है आपके लिए लोक संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मूमल मुल्तान खान और पार्टी का गाया ये लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होते हैं। आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और

0: संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली

0: के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान उन लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत के अंतरिक्ष

0: अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district,

0: respondent.
1: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks, and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana, and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden, and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढुला हमारा चैनल है मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम में 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों में रात्रि के 9:15 और 24 सेकंड हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत से जुड़ने का। आज का ये कार्यक्रम मैं कल के लिए डेडिकेट करता हूँ। कल फादर्स डे मनाया जाएगा, तो क्यों ना हम कुछ बात करें एक ऐसी शख्सियत की कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ नाम नहीं है, घर की चिंगारी है। उनकी हाथों की खरोंचे बतलाती है किसी दिन उन्होंने अपनी आंखों से ज़्यादा अपने हाथों से दुनिया बनाई है। जब वो चुप होते हैं ना, समझ लीजिए कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उन्होंने वह सब शब्द अपने कर्मों से हमें सिखाने के लिए रखे हुए हैं। उनकी मुस्कान बड़ी छोटी होती है, पर छोटी सी मुस्कान में आपकी सारी असफलताओं के लिए माफी और अगली कोशिश के लिए हिम्मत छुपी होती है। आवाज गला कठोर होता है, पर हर सख्ती के बाद उनकी बाहों की जो नरमी होती है, वही बाहें जो गिरने पर आपको उठाती भी हैं। मुझे याद है एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप थके नहीं? वे चुप रहे और बस मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, चलो बेटा खाना खा लो। बस उस एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि उनकी सारी चिंताएं मेरे भीतर समा चुकी हैं। ये वो शख्स है, एक ऐसा नाम

नाम जो आवाज से पहले ही साहस दे देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि यह शब्द अपनी जगहों जगह पर चुप होता है, पर हर चुप्पी में उसकी मौजूदगी इतनी घनी होती है कि हम उसे फांद कर घर से बाहर नहीं जा सकते। वो व्यक्ति जो आपकी दुनिया की नींव खड़ी करता है, पर अक्सर उसका श्रेय खुद अपनी छाती पर लिखता है। ये वो सपने देखते वाले आंखों का पीछे का बैकग्राउंड होता है, जो आप आंखों में सपने संजोए होते हैं उसे पूरे करने का साहस होता है।

हम अक्सर उन्हें उनसे बड़े बड़े शब्दों की उम्मीद करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, जैसे वाक्य। पर पिता का प्यार कम शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। उन्होंने सिखाया कि वक्त पर उठना, जिम्मेदारी लेना, गलतियों से सीखना। जब उन्होंने हमें देखा कि हम गिर रहे हैं, तो पहले वे दौड़े नहीं, वहीं खड़े रहे। उन्होंने हमारे गिरने का संगीत सुना, फिर चुपके से अपने जूते उतारे और जमीन पर बैठकर अपने हाथ फैलाए और कहा, उठो। उठो की आहट जब हमें सुनाई दी, तो उनके उठों में दया नहीं थी, विश्वास की मजबूती थी। वे हमें भरोसा देते कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं। याद कीजिए, कई बार उनकी सख्ती ने हमें रोका भी है, पर उससे पहले हमें कई जगहों पर बचाया है। उनकी नसीहत आपको कटु लग सकती है, पर उसमें आपकी सुरक्षा की छवि छिपी होती है। आदमी जो आपके सपनों को छूने का हौसला देता है, ऊंची छलांगों पर आपके पीछे खड़ा होता है।

पर उसी हौसले को वास्तविकता बदलने के लिए आपको तैयार भी करता है, कभी डांट कर, कभी चुटकी लेकर, कभी आंखों की उस नर्म चमक से जो कहती है कि मैं तुम जानता हूं कि तुम कर पाओगे, तुम कर लोगे। ये गुस्सा उनका प्यार होता है।

जब हम बड़े होकर उनके पुराने पन्ने पलटते हैं तब हमें उनकी छोटी छोटी सी बातें अर्थ में दिखती हैं। वह जो हर सुबह अपने जूते खड़े करके निकालते थे, उसे पॉलिश करते थे, आज हमारे लिए अनुकरणीय बन गए हैं। जब वे नहीं रहेंगे तो उनके छोटे छोटे से नियम हमारी विरासत बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें अपनाएंगे या बदलेंगे, पर वे हमारे साथ हर कदम पर रहेंगे। आखिरकार पिता का अर्थ केवल रामायण या इतिहास की कहानियों में नहीं होता, वह आपके रोज़मर्रा के रिश्तों में दिखता है। जब आप थके होते हैं और कोई आपके लिए चुपचाप से चाय बना कर दे दे, जब आप हिम्मत हार चुके होते हैं तब कोई सिर्फ आपका हाथ पकड़ कर खड़ा कर दे, जब घर में

अंधेरा हो, आपको डर लग रहा हो और कोई व्यक्ति छोटी सी टॉर्च जला कर दे दे, डर मत पिता, वही टॉर्च है। रोशनी का वह सहज स्रोत जो सदा जलने की ठान कर बैठा हुआ होता है। तो आज चाहे वे आपके साथ हैं या दूर हैं, या एक बात याद रखिए, उनकी मौन उपस्थिति की जो गहराई है उसे देखें, समझें, सराहें और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। क्योंकि पिता का दिया हुआ विश्वास, उनकी सीखी हुई शालीनता और उनका सहारा, यही वह धरोहर है जो पीढ़ियों तक चलती है। और इस धरोहर को संभालना हम सबका फर्ज होता है। एक अगर वे आपके पास हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, अगर दूर हैं तो उनको एक कॉल कर दीजिए, अगर वे अब नहीं रहे हैं तो उनकी कही हुई एक बात जहन में लाइए और उसी से अपनी राह रोशन कीजिए। क्योंकि पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वह विश्वास है, वह अभ्यास है आपका।

पिता शब्द एक ऐसा था सागर है जिसकी चर्चा खत्म नहीं हो सकती, लेकिन समय की सीमा बहुत महत्वपूर्ण होती है और यही इन्होंने हमें सिखाया है। 9:30 होने को है, अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से चित्र भारती।

संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं।

एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी।

0: इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म, क्या माइक्रोड्रामा,

0: सिनेमा का फास्ट फैशन है या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन-बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले,

भीड़ भाड़ वाले शहर में हूँ या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से, अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए, हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: कह न सके वो किसी को अपना बनाए क्यों।
1: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
2: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
3: फिर कोई
2: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमही का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार। In today's national program of music, we are going to broadcast a classical vocal performance by Dr.
1: जिस साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
2: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great music.

0: श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lal Jai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam Ji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का मेन चैनल है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजते हैं। आपसे कुछ देर में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय

राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।